एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

0: छह बजे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

समवेत स्वर में अभी आपने सुना देश गान। अब सुनिए विंदु जी की ये पारंपरिक भक्ति रचना सुमन कल्याणपुर के स्वर में। संगीत पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले और भवदीप जयपुर वाले का।

अब सुनिए नारायण अग्रवाल नारायण की ये भक्ति रचना, स्वर कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी का, संगीत पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का।

0: अभी आप सुन रहे थे आस्था के स्वर कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब सुनिए चिंतन आलेख ए कमर का, निवेदक उमेश कुलकर्णी।
1: इस्लाम के 5 मूल सिद्धांत हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इन 5 सिद्धांतों में सिर्फ हज ही ऐसा सिद्धांत है जिसके पालन की अनिवार्यता उनके लिए नहीं है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अथवा विपन्न हैं। ईदुज़्ज़ुहा हज के साथ जुड़ा हुआ मुसलमानों का एक अहम पर्व है। यह त्यौहार पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह शिक्षा देना है कि इंसान अल्लाह के प्रभुत्व को इस प्रकार स्वीकार करे कि अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर दे। यह निर्विवाद सत्य है कि माँ बाप के लिए अपनी संतान से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं होता। इसीलिए जब वे अपनी स्वामी अल्लाह की इच्छा पर अपनी संतान तक को सहर्ष न्योछावर यानी कुर्बान करने को तैयार हो जाएं, तो अटूट श्रद्धा भक्ति का इससे बड़ा प्रदर्शन और क्या हो सकता है। ईदुज़्ज़ुहा का दूसरा अहम मकसद इंसान में त्याग और बलिदान की भावना का संचार करना है, जिसके बिना किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति असंभव है। त्याग और बलिदान के कारण ही संसार के सभी महापुरुषों को आज भी याद किया जाता है। कुर्बानी का मकसद वास्तव में अपने प्राण अल्लाह को समर्पण करने का प्रदर्शन है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा दी गई कुर्बानी का विस्तृत विवरण पवित्र कुरान में भी मिलता है। उल्लेखनीय है कि मोमिनों का पर्व हो या मातम, खुशी हो या गम, मरना हो या जीना, सब अल्लाह के लिए है। साल भर में मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले 2 पर्व ईद उल फितर और ईद उज़ुहा दोनों ही अल्लाह की इबादत के साथ मनाने के लिए नियत है। ईद उज़ुहा का पर्व इस्लाम वर्ष की अंतिम महीने ज़िल हिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, जबकि इसके एक दिन पूर्व 9वीं तारीख को हज किया जाता है, जिसमें सारी दुनिया से मक्का पहुँचने वाले मुसलमान सामूहिक खुशी के उद्देश्य से ईद उज़ुहा मनाते हैं और इस खुशी में शरीक होने के लिए दुनिया भर के मुसलमान जहां हो वहां ईद उज़ुहा का पर्व मनाते हैं। इस मौके पर कुर्बानी करना अनिवार्य है। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में कुर्बानी की जाती है और इसका महत्व भी है। इसी तरह इस्लाम में भी पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जो कुर्बानी दी उसी की याद में ये पर्व मनाया जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 बरस पूर्व पैगंबर हुए थे। आपकी उम्र जब 80 वर्ष की हो गई तब आपने दुआ की कि ए अल्लाह मुझे एक वारिस अता फरमा। दुआ के बदले में अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया और उसका नाम इस्माइल रखा गया। वृद्धावस्था में उन्हें अपने इकलौते बेटे से बहुत मोहब्बत थी। वक्त गुजरा और इस्माइल की उम्र जब 10 वर्ष की रही होगी कि एक रात ख्वाब में आपने देखा कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है कि अपनी सबसे प्रिय की कुर्बानी करो। सुबह होने पर उन्होंने अपने बेटे से ख्वाब और अल्लाह के हुक्म का जिक्र किया। इस पर इस्माइल ने खुशी खुशी जवाब दिया कि आप अल्लाह के हुक्म पर अमल कीजिए, मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए और बेटे इस्माइल को ज़मीन पर लिटाया तो बेटे ने वालिद से कहा, अब्बा आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा न हो मेरी सूरत देखकर आपकी छुरी रुक जाए। आपने फौरन आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चला दी और जब पट्टी खोलकर देखा तो वहां पर एक दुम्बा ज़िबह किया हुआ नजर आया और बेटा सामने खड़ा था। ये भी एक चमत्कार ही था। इसी तरह बेटे इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म अल्लाह ने इम्तिहान लेने के उद्देश्य से दिया था और कुर्बानी के वक्त जो शब्द कहे जाते हैं उसका सार भी यही है कि मैंने अपना रुख उसकी तरफ फेर दिया जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया। मैं ठीक उसी तरीके का अनुयायी हूँ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका था और मैं अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराने वालों में से नहीं हूँ। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है जो

0: पूर्ण सृष्टि का पालनहार है, जिसका कोई शरीक नहीं। इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं अल्लाह के आज्ञाकारी बंदों में से हूँ। ए अल्लाह, यह तेरा ही माल है और तेरे ही लिए है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था एक कमर का, निवेदक उमेश कुलकर्णी। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर था अनुराधा पौडवाल का। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, वाचिका तरुणा शुक्ला।
1: किसान भाई बहनों, राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे जलवायु परिवर्तन और कृषि। वाचक स्वर तरुणा शुक्ला। भाई बहनों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश छे। हमारे

8:15 पर सुनिएगा सलमा आगा की गाई कुछ सुगम संगीत रचनाएं। आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम हैं सुबह 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग और 10 बजे जिले की चिट्ठी। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 11 बजे से 5:30 तक अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। दस बजकर 5 मिनट पर होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं की पसंद के फिल्मी गीत होंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में 10:35 पर।

श्रोताओ, अब से कुछ देर बाद प्रातः 7 बजे प्रसारित करेंगे विशेष वार्ता स्वातंत्र वीर वीर सावरकर। वार्ताकार शुभांगी वकील। सात बजकर 20 मिनट पर श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों और उनके जवाबों पर आधारित होगा सुनहरे पत्र कार्यक्रम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोताओ, आज संध्या 5:30 पर प्रसारित करेंगे निमाड़ी लोक संगीत। संध्या 6 युववाणी कार्यक्रम में आज का आकर्षण है क्रम इंद्रधनुष। फिल्म संगीत सुनिएगा 6:30 पर। 7:21 पर किसानवाणी कार्यक्रम में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ग्राम दीपला के प्रगतिशील कृषक अश्विनी कुमार बख्शी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। विषय होगा समग्र खेती अंतर्गत मछली पालन आज की आवश्यकता। इस विषय पर आपसे बातचीत की है जगदीप सिंह फरे ने। रात्रि 8 से 8:45 तक, 9 से 9:15 तक और फिर 9:30 से 11 तक अनुप्रसारित किए जाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इस बीच रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे स्पॉटलाइट।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, आपसे कुछ ही देर बाद प्रातः 7 बजे प्रसारित करेंगे विशेष वार्ता स्वातंत्र वीर वीर सावरकर, वार्ताकार शुभांगी वकील। 7:20 पर श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों और उनके जवाबों पर आधारित होगा सुनहरे पत्र कार्यक्रम। श्रोताओं की पसंद के फिल्मी गीत होंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में 10:35 पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में यूनिसेफ सहयोगित परियोजना के तहत दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रसार कार्यशाला हुई। इसमें पंधाना विकास खंड के जनजातीय समुदायों में आहार विविधता, एनीमिया और मौसमी प्रवासन से जुड़े पोषण मुद्दों पर किए गए अध्ययन के निष्कर्ष साझा किए गए। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का कृषि रथ बुधवार को ग्राम भगवानपुरा पहुंचा। पंचायत सभागृह में किसानों को विभागीय योजनाओं, प्राकृतिक खेती, नरवाई प्रबंधन और पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। शासकीय महिला आईटीआई कॉलेज खंडवा में संचालित हिंदी स्टेनो, कंप्यूटर, सिलाई और इलेक्ट्रीशियन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी मोबाइल या कियोस्क सेंटर के माध्यम से www.dsd.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आज ईद उज जुहा के अवसर पर मुख्य नमाज शहर के ईदगाह मैदान पर सुबह 9 बजे होगी। और अब खबर क्रिकेट की। आईपीएल 19 में कल राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को एलिमिनेटर मैच में 47 रन से हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। अब फाइनल में पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल्स का सामना शुक्रवार को गुजरात टाइटंस से होगा। और अब मौसम का हाल। नौतपा के तीसरे दिन बुधवार को दिन के तापमान में 1.4 डिग्री और रात के तापमान में 0.6 डिग्री की गिरावट हुई। कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 42.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 24.4 डिग्री सेल्सियस।
1: ये थी आज की ताजा खबरें, संकलन पूजा पाटीदार का।
2: आज की ताजा खबर।
3: फोन करें, गीत सुने।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
3: कहिए अपनी बात, सुनिए अपनी पसंद का फिल्मी गीत। हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्रत्येक गुरुवार दिन में 11 बजे से 11:30 बजे तक। टेलीफोन नंबर है 2226063। फोन करें, गीत सुने। मुझे कह

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है विशेष वार्ता स्वातंत्र वीर सावरकर, वार्ताकार शुभांगी वकील।
3: वीर सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ और मृत्यु 26 फरवरी 1966 में हुई। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं और उनके भारत माता के लिए जो महान कार्य रहे उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। ये भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा महान विचारक थे। ऐसा

का अष्टपहलु व्यक्तिमत्व था। उन्हें प्रायः स्वातंत्र वीर और वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। वे एक कट्टर तर्क बुद्धिवादी व्यक्ति थे जो सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे। उनके जीवन की खास 10 बातें जो है वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वीर सावरकर जी ने राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में धर्मचक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने माना। उन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। वे ऐसे प्रथम राजनीतिक बंदी थे जिन्हें विदेशी भूमि पर अर्थात फ्रांस में बंदी बनाने के कारण हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला पहुंचा। वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया तथा बंदी जीवन समाप्त होते ही जिन्होंने अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए। अर्थात उनके मन में सदैव भारत के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, यही विचार होते थे। दुनिया के वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद भी किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। सावरकर जी द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक सनसनीखेज पुस्तक रही जिसने ब्रिटिश शासन को हिला डाला था, ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी थी। विनायक दामोदर सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें 2-2 आजीवन कारावास की सजा मिली, पर वो उससे भी नहीं डरे, सजा को पूरा किया और फिर से वे राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा ने उन्हें जरा भी कमजोर नहीं बनाया। वो उसी जोश से अपने मातृभूमि के लिए कार्य करते रहे। वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 2-2 देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। वे पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया। अंग्रेज सरकार को वो सोचने के लिए मजबूर कर देते थे। अंग्रेज सरकार की नींद उन्होंने उड़ा दी थी। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय थे, ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से साफ मना कर दिया। उनको उसके परिणामों की कोई चिंता नहीं थी और इसके फलस्वरूप उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया। फिर भी वो नहीं डगमगाए और अपने मातृभूमि के लिए जो करना चाहते थे वो करते ही रहे। अपनी कलम से समाज को जागृत करने का कार्य उनका निरंतर ही चलता रहता था। भारत के महान क्रांतिकारी वीर ऐसे थे वीर सावरकर जी। उनकी कविताएं, उनकी कुछ रचनाएं जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध थी और हृदय को

छू जाने वाली थी। इसमें से ही एक रचना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। 12 जुलाई 1660 की रात्रि में महाराज बाजी प्रभु देशपांडे जी और उनके 600 वीर मावलों के साथ जो अभूतपूर्व रणसंग्राम स्वराज्य की रक्षा के लिए किया, उस प्रसंग पर सावरकर जी ने पोवाड़ा लिखा, वह बहुत ही प्रेरणादायी रहा और वह रचना भी बहुत ही सुंदर है। जयोस्तुते जय।

यशोयुतां वंदे, यशोयुतां वंदे, जयोस्तुते जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले शिवास्पदे शुभदे। इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए उनके जो विचार थे वो उन्होंने इसमें रखे हैं। इसी प्रकार उनकी एक दूसरी रचना जो है वो मुझे स्वयं को भी बहुत पसंद है, जो सागरा प्राण तळमळला के नाम से प्रसिद्ध है और जिसको आदरणीय स्वर सम्राज्ञी लता दीदी ने उसको स्वर दिया है।

0: तळमळला सागरा,
1: ऐसा उनका मातृभूमि प्रेम और उस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, उस मातृभूमि के विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उन सभी कार्यों का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। किंतु मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया है आपके सामने रखने का। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। और ऐसे इस महापुरुष वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी को मेरा शत शत प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की विशेष वार्ता, स्वातंत्र्य वीर वीर सावरकर, वार्ताकार शुभांगी वकील। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक में राज्यों को स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और बुनियादी

0: मोर्चे पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद पर देशवासियों को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में पढ़ने की अपील की। क्विशा शर्मा मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की। और आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक ना रहे, बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों में भी तेजी लाए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिजली सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने लोगों से सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़ने की अपील की है। बोर्ड का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही पढ़ी जाए। इसके अलावा कुर्बानी भी तय जगहों पर हो और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न शेयर करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले एक दशक में राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना और ईपीओएस मशीनों जैसे कई अहम सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। यह नई योजना उस कड़ी को और आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। चर्चा का जलवायु के अनुकूल खेती, दलहन तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर जोर रहेगा। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जांच नहीं की। अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं ट्विशा के पति समर सिंह पहले से 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करते हैं। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार कल पन्ना जिले के बहिरपुरवा गांव पहुंचे और कुआं धसकने से जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक में डूबे परिवारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि ये मजदूर अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे और यह हादसा बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवारों को दिलाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सांची स्तूप में रखे भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। आज ये अवशेष भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे, जहां 29 मई को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग

इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। वहां की राजधानी उलान बतौर में 31 मई से आम लोगों के दर्शन के लिए अवशेषों को रखा जाएगा। यहां करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया है। अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। शहरी इलाकों में नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में प्रदेश में बाल विवाह के 538 मामले दर्ज किए गए थे। प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारी है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के अधिकार हेतु देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग और शिप्रा नदी के नए घाटों के किनारे अमलतास, गुलमोहर और पलाश जैसे गर्मियों में खिलने वाले फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आईपीएल एनिमिनेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। मैच के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद में आरसीबी से फाइनल खेलेगी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं, आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। कल दोनों जगहों पर पारा 46.6 डिग्री रहा। आज यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से 31 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक महिला और 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। रतलाम जिले के आलोट के पास चलती कार में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर जान बचाई। खंडवा जिला चिकित्सालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास की शाही ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने समाज से कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की है। खरगोन जिला सहकारी बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख से अधिक के गबन पर 3 कर्मचारी निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों और कारखानों में बाल श्रम रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा में पेयजल और हैंडपंप शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू। कट्टी में प्रेमनगर बस्ती के आवासों पर बने 8 अनधिकृत कब्जे जिला प्रशासन ने हटाए। राजगढ़ में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित। और शहडोल में साल खरीफ धान बोनी का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,50,000 हेक्टेयर किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

101.2 MHz पर यह है FM खंडवा, निमाड़ की सुरीली धड़कन। आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है सुनहरे पत्र कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के सुनहरा पत्र कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए आपके अपने रेडियो मित्र मनीष शर्मा और
1: विद्याधर मुले का।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो मुले जी, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे आप? नौतपा का आज चौथा दिन है।
1: अरे बाप रे, बमुश्किल कुछ घंटों के लिए सूरज की तपन को हम भूल पाते हैं और आपने सुबह सुबह याद दिला दिया। हालांकि याद न दिलाते तो भी एक घंटे के बाद वो जो तपन शुरू हो ही जानी थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन देखिए, प्रकृति के जो कुछ नियम हैं वो बेहद अनिवार्य होते हैं। ये अलग बात है कि हमें पसंद आते हैं या नहीं। तो ये जो रोहिणी नक्षत्र का 9 दिन का फेर है, ये शायद हमारी इसी चक्र का हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: और इसीलिए स्वीकार्य है। हर मौसम अपने पूरे शबाब पे हो तो उसके बाद अगले मौसम का जो आनंद है वो हमेशा आता है।
0: क्या बात है
1: जी। और इसी तरह ये चक्र पूरा होके हम फिर गुरुवार पे आ गए और हमारे पास ढेर सारे श्रोताओं के पत्र हैं
0: तो,
1: और ईमेल भी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो फौरन से पेशतर हम उनकी तरफ बढ़ चलते हैं
0: जी। तो ये पहला ईमेल हमें मिला है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी और तनुजा जोशी का
1: जी।
0: इन्होंने लिखा है कि 15 मई को अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर विद्या सिंह चौहान और कीर्ति गोखले द्वारा प्रस्तुत सुनहरे पल कार्यक्रम में उनके गीत सुनवाए गए। फिल्मी अभिनय के कई चर्चित किस्से सुनाते हुए कार्यक्रम को मनोरंजक और रोचकता से परिपूर्ण कर दिया गया, दोनों को बधाई। साथ ही गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में गर्मी से बचाव और चाय दिवस पर प्रस्तुति लाजवाब लगी। सुनहरा पल कार्यक्रम जो 19 मई को प्रसारित किया गया था, प्रस्तुति दीपमाला शिंदे की थी। 20 मई का आपके मित्र गीत कार्यक्रम, प्रस्तुति ममता डोडिया की, बहुत ही अच्छी लगी। चेतना कार्यक्रम में डॉक्टर जगदीश जोशी के साथ जो प्राकृतिक चिकित्सा पर आपकी यानी विद्याधर मुले जी की बातचीत, इन्हें बहुत ही लाभदायक लगी। और आपकी ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म शोले की प्रस्तुति इन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उत्कृष्टता शैली लिए हुए थे ये कार्यक्रम। और शुक्रवार को परिवार दिवस पर विशेष वार्ता शिवानी मौर्य की इन्हें बहुत ही प्रासंगिक लगी। साथ ही शास्त्रीय गायन में राशिद खान का जो गायन प्रसारित किया गया था
1: जी,
0: वो इन्होंने पसंद किया है।
1: जोशी परिवार को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने प्रत्येक दिन हमारा प्रसारण सुना और उसमें उस दिन जो विशेष आपको लगा वो आपने इंगित किया है। और जहाँ तक बात है कि माधुरी दीक्षित पर केंद्रित जो कार्यक्रम था
0: जी,
1: और उसके बाद आपने वो चाय दिवस की भी चर्चा की, तो देखिए एक समय था जो हमारे यहाँ चाय बड़ी त्याज्य मानी जाती थी और बुरी आदत के तौर पे मानते थे
0: जी।
1: लेकिन चाय आज जितनी अनिवार्य है, एक समय था कि माधुरी दीक्षित फिल्मों के लिए उतनी अनिवार्य हुआ करती थी और उनका होना
0: जी
1: फिल्म का हिट होना माना जाता था। तो और बहुत अच्छा कार्यक्रम कीर्ति जी और विद्या जी ने पेश किया था, उन तक आपकी बधाई पहुंच गई। दीपमाला शिंदे जी, ममता जी और जितने भी हमारे प्रस्तोता हैं, प्रशांत जी, इनकी जो मेहनत है वो सफल हुई है और कार्यक्रम की प्रस्तुति में जो भी समय लगता है, जो भी अपनी क्षमता से व्यक्ति उसे प्रस्तुत करता है
0: जी,
1: आपकी ये पावती मिल जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है।
0: ऐसा लगता है कि मेहनत सार्थक
1: सफल हो गई, आप ही के लिए है मेहनत
0: जी।
1: धन्यवाद।
0: और अगला ईमेल अब शामिल करते हैं। ये हमारे श्रोता हैं डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी
1: जी।
0: लिखते हैं कि आकाशवाणी खंडवा परिवार और टेक्निकल टीम, साथ ही सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार
1: जी।
0: आकाशवाणी की 90 साल की प्रसारण यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके मित्र गीत कार्यक्रम समयानुसार सुनते हैं और हेलो फ्रेंड्स युवाणी कार्यक्रम में भी सुनते हैं। इस लोकप्रिय कार्यक्रम में पुराने श्रोताओं के फोन रिकॉर्डिंग करने के बाद कार्यक्रम में शामिल नहीं करते, वो पुराने श्रोताओं को कष्ट पहुंचाता है। कोई भूल हुई हो तो माफ करना। आपका नियमित श्रोता मित्र धीरज रबारी
1: जी। आपकी अंतिम पंक्ति है, इसे हम भी दोहराते हैं। देखिए, डेरा पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी का मेल आया है और इनके पत्र हमारे पास आते हैं, इनकी जो ईमेल फरमाइशें हैं वो भी शामिल होती है

0: सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करूंगा कि आमतौर पर लोग चेहरे को नमस्कार करते हैं और उद्घोषकों को नमस्कार खूब मिलता है, लेकिन आपने टेक्निकल टीम की बात की है।
1: क्या
0: दरअसल हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे जो तकनीकी पक्ष है, हमारे इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस है,
1: बहुत
0: और
1: महत्वपूर्ण हिस्सा
0: बहुत
1: है
0: महत्वपूर्ण
1: तकनीकी
0: हिस्सा है,
1: विभाग।
0: और वो अक्सर पीछे रह जाते हैं जहां शुक्रिया की बात आती। इसलिए आपको शुक्रिया कि हमारे टेक्निकल टीम के लिए आपने धन्यवाद कहा है। जहां तक बात है कि आप हेलो फ्रेंड्स युववाणी कार्यक्रम में पुराने श्रोताओं की फ़ोन रिकॉर्डिंग करने के बाद भी शामिल नहीं करते, जी हाँ, ये तो मुझे भी लगता है कि ये बुरा लगना बेहद स्वाभाविक है। लेकिन कई बार देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, कई बार समय अभाव के कारण हम वो कार्यक्रम वो फ़ोन कॉल शामिल नहीं करते, और कई बार ऐसी भी कोशिश रहती है कि जो बचा हुआ फ़ोन कॉल है अगले कार्यक्रम में शामिल कर लें, लेकिन चूंकि प्रस्तोता बदल जाता है
1: जी
0: तो इसलिए वो भी ठीक नहीं लगता, तो इसलिए हो सकता है कि वो आपका फ़ोन कॉल उसमें शामिल नहीं हुआ हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ है। आपने तो जब बातचीत की तब तो कोई
1: जी
0: दिक्कत नहीं लग रही थी क्योंकि आप सीधे प्रस्तोता से बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिकॉर्ड होता है तो कई बार महसूस होता है कि ये प्रसारण योग्य रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। बातचीत की बात नहीं कर रहा हूँ,
1: उसकी गुणवत्ता की
0: उसकी
1: बात कर रहे हैं।
0: गुणवत्ता, रिकॉर्डिंग गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए भी छूट जाता है। और कई बार मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि एक कॉल ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है, अब उसे शामिल नहीं किया जा सकता, तो हर गाने को बहुत छोटा छोटा करना तो हर गाने के साथ अन्याय हो जाता
1: वो
0: है,
1: भी ठीक है।
0: इसलिए छूट जाता है। आप हमारे पुराने श्रोता हैं, और सिर्फ इंदौर ही नहीं, भारत के बहुत सारे केंद्रों को आप सुनते हैं,
1: जी
0: ये बात आपने वहाँ भी महसूस की होगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो मासूम सी शिकायत है वो दूर हुई होगी।
1: जी बिल्कुल। अब अगला ईमेल हम शामिल कर रहे हैं
0: जी
1: भाटापारा छत्तीसगढ़ से। सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदेही, अंशिका अंकिता, अनूपपुर से जयवंती केवट।
0: जी क्या लिखते हैं?
1: इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी खंडवा के हम नियमित श्रोता हैं। यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। शिक्षा, ज्ञान, मनोरंजन सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। आपकी मित्र ये गीत कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। सफल प्रस्तुति के लिए सभी अधिकारीगण और सभी आरजे को बधाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे ये हौसला अफजाई की, और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, ऐसे ही सुनते रहिएगा। जो अखरे जो खटके जो पसंद ना आए उसका भी उल्लेख करें।
1: बिल्कुल। हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, ग्राम शिरटे, जिला सांगली, महाराष्ट्र से लिखते हैं। शनिवार 23 मई को प्रसारित चेतना कार्यक्रम बहुत ही उपयुक्त लगा। इसमें थायराइड विषय पर जो जानकारी दी गई बहुत ही लाभप्रद थी।
0: जी
1: जानकारी दी थी डॉक्टर मिश्रा जी ने।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना का उद्देश्य ही है कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो, और थायराइड एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं, और
1: जी
0: वो तकलीफ़ बढ़ जाने के बाद फिर वो लोगों का ध्यान जाता है, और वो चूंकि अंतरस्रावी ग्रंथियों से जुड़ा है इसलिए हमारे पूरे शरीर का स्वास्थ्य उस पर जुड़ा होता है।
1: जी
0: आपको बातचीत पसंद आई, कार्यक्रम पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: मुले जी, ये हमारे हमारे श्रोता कार्यक्रम में शामिल हुए थे विजय सोनी जी,
0: जी
1: ओंकारेश्वर रोड सनावत से। उन्होंने ईमेल भी किया है, साथ में रानी सोनी, शुभम और रितु सोनी। ये
0: अच्छा
1: लिखते हैं कि हमारे श्रोता कार्यक्रम के अंतर्गत पंकज लाल जी से जो बातचीत हुई थी 21 तारीख गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में, हमारे सभी श्रोता मित्रों ने इसके लिए तारीफ की। सभी मित्रों का धन्यवाद।
0: जी दरअसल ये आपने आकाशवाणी के माध्यम से अपने मित्रों को धन्यवाद
1: जी।
0: दिया है। धन्यवाद, वैसे ये आप अपने व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अगला ईमेल अब शामिल करें।
0: जी जरूर।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे हमारे नियमित श्रोता हैं।
0: जी
1: ये लिखते हैं कि पर्यावरण व हमारा दायित्व बहुत ही प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक जानकारी मीनू जैन जी द्वारा नारी जगत कार्यक्रम में, और हमारे परम मित्र श्रोता भूपेंद्र सिंह कुकरेजा मिंटू भाई को हमारे श्रोता में सुना, पुरानी यादें ताज़ा हुई। इसी दिन यमन कल्याण पर जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था वो पसंद आया। फोन इन कार्यक्रमों में फोन घंटी बजने पर भी नहीं उठाया जाता, और निवाड़ी लोक गीतों में प्रभाकर दुबे की गम्मत अवश्य सुनवाएं। ये सुझाव है, क्या श्रोताओं के सुझावों को आकाशवाणी पूरा पूरा अमल करती है? सही सही बताते हैं, आईची शपथ है।
0: हनुमंत जी शपथ।

0: की कोई जरूरत नहीं है, आपकी फरमाइश पूरी होती है। आज ही आपको प्रभाकर दुबे की चीज़ हम सुनाने की कोशिश करेंगे या फिर उसके अगले दिन हम आपको सुनवा सकते हैं। तो एक दो तीन दिन आप सुनते रहिएगा, आपको आपकी फरमाइश पूरी होती नज़र आएगी, सुनाई देगी। और जहाँ तक बाकी कार्यक्रमों की बात है कि आपको अपने मित्र की बात जो सुनी आपने, पुरानी यादें ताज़ा हुई, उसके लिए यह हमारा जो कार्यक्रम है हमारे श्रोता, वो है ही कि इस मंच के माध्यम से आप अपने सभी मित्रों और सभी श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचे।
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: एक और नियमित हमारे श्रोता हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना शिवी सलोनी, यीशु लुसियान, पेंटर बाबू, जूना राम मंदिर, रामगंज, खंडवा से।
0: जी
1: लिखते हैं कि सुबह सवेरे का पहला प्रणाम स्वीकार करें, पिछले सप्ताह कार्यक्रम कम सुने, माफी चाहता हूँ। सुनहर पल जब भी विद्याधर मुले जी प्रस्तुत करते हैं तो गीतों का चयन अद्भुत और बहुत ही शानदार पेशकश रहती है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग खंडवा की प्रस्तुति दीपमाला जी और श्वेता जी की बहुत ही शानदार रही। वहीं राग रंग में हमेशा की तरह पराग जी और कीर्ति जी ने बहुत ही सुंदर और सदाबहार रागों से संबंधित गीतों से हमारा परिचय करवाया, बहुत ही अप्रतिम था। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म नायक की कहानी, संवाद, पटकथा, जानदार पेशकश को हम सलाम करते हैं। प्रशांत मालवी जी की प्रस्तुति थी। इन सभी कार्यक्रमों को बेहतरीन बनाने के लिए आकाशवाणी खंडवा को साधुवाद कहा है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस नाचीज की तारीफ में दो पंक्तियां कही, शुक्रिया। और हमारे जो दूसरे प्रस्तुता हैं कीर्ति जी, पराग जी के राग रंग के लिए, मेरे ख्याल से राग रंग शब्द नहीं था पर एक तारीफ और थी इससे पहले वाले पत्र में।
1: जी हाँ,
0: प्रशांत जी की भी आपने तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम सुनने के लिए और सराहने के लिए।
1: 21 मई का सुनहरे पत्र सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। चिन्मय जी और उनके साथ जो प्रस्तोता थी उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं। इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम भी उन्होंने पसंद किया है। 13 मई को प्रसारित एक ही फिल्म से प्रोग्राम के तहत फिल्म मेरे महबूब की प्रस्तुति लाजवाब रही, नाजमा परवीन को बधाई। 15 मई, 18 मई, 19 मई को प्रसारित आपके मीत गीत कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा पत्र, ईमेल शामिल किए गए जो कि सराहनीय कदम है। सुगम संगीत में अनुराधा पौडवाल को सुनकर दिल खुश हो गया। विशेष कार्यक्रम के तहत डॉक्टर योगेश शर्मा की वार्ता तेज़ गर्मी से बचाव के उपाय और सीमा कराहे की वार्ता जो थी टमाटर की खेती, मेरे ख्याल से कृषि चर्चा के बारे में लिख रहे हैं, इसके लिए बधाई देते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लगभग पूरे प्रसारण को आपने ध्यान में रख के हमें पत्र लिखा है।
1: श्रोता का नाम बता देता हूँ आपको, पुराना तालाब डुमराव के हमारे श्रोता हैं वलीउल्लाह अंसारी, निशा परवीन और अस्मा नाज अंसारी।
0: जी और न केवल आपने, अक्सर होता है कि हम जो कार्यक्रम सुनते हैं वो सुनते हैं लेकिन बात हम उसी की करते हैं जो हम कार्यक्रम पसंद करते हैं, और आमतौर पर ये फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के प्रति ये ज़्यादा आग्रह होता है, लेकिन आपने पूरे प्रसारण के बारे में लिखा है
1: जी।
0: और उसकी तारीफ की है, नाजमा परवीन जी को भी आपकी बधाई पहुंच गई, विद्या जी और दीपमाला जी तक भी आपकी बधाई पहुँच गई, और सुगम संगीत में आपने अनुराधा पौडवाल को सुना। और अनुराधा जी की बात यह है कि अपने समय में वो जितनी मशहूर थी लेकिन कालांतर में बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़े समय के लिए कोई कलाकार विशेष पर्दे के पीछे जैसे चला गया ऐसा लगता है, वैसे ही अनुराधा जी के बारे में है। लेकिन वो सुगम संगीत में आपने उन्हें सुना, सराहा, शुक्रिया कार्यक्रम सुनने के लिए।
1: जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं नरेंद्र डोम, निशा टुक टुक लड्डू और प्रभा देवी डोमिन।
0: जी
1: लिखा है कि 14 मई 2026 का लोकप्रिय कार्यक्रम सुना, प्रस्तुति छू गई। इस दिन दीक्षित जी और पंकज जी प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इनका दिल से शुक्रिया, जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। 19 मई को दीपमाला जी द्वारा पेश प्रोग्राम जो पेश किया गया था आपके मीते गीत कार्यक्रम,
0: जी
1: ये दिल को छू गया। इसी के साथ ममता जी और विद्या सिंह की प्रस्तुति भी इन्होंने पसंद की है। 19 मई को सुगम संगीत इन्होंने भी पसंद किया, अनुराधा पौडवाल के गाए गीत सुनाए गए। 20 मई को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म शोले की कहानी दिल को छू गई, गीत भी बहुत ही अच्छे लगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय जी, और दीपमाला जी भी अभी कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो उनकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ, और कार्यक्रम आपको पसंद आए, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सुने, इसी तरह लिखें, और ये भी है कि हमारे दोनों जो प्रसारण सभाएं हैं, हम शाम की भी सभा है उस पर भी ध्यान दें, उसके बारे में भी लिखें जरूर।
1: बिल्कुल। छोटी बलिया करजत मुंबई से आमना

0: अंसारी, दुखना फैजानी, इकबाल अंसारी और सदफ आरजू अंसारी। ये लिखते हैं कि 21 मई को प्रसारित सुनहर पत्र कार्यक्रम सुना दिल की गहराइयों को छू गया। इसी दिन आपकी पसंद और सुगम संगीत भी लुभावना लगा। पंकज लाड़ जी को बधाई। 28 अप्रैल 29 अप्रैल को प्रसारित आपके मीत गीत कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब लगा। मनीष शर्मा जी को बधाई। एक ही फिल्म के तहत 6 मई को प्रसारित फिल्म बाजीराव मस्तानी की कहानी और गीत पसंद आए। कीर्ति साहिबा का शुक्रिया।
1: कीर्ति साहिबा भी बहुत खुश होंगी, उन्होंने बहुत मेहनत से वो कार्यक्रम तैयार किया था
0: जी।
1: आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी को भी आपकी बधाई उन तक हम पहुंचा देंगे, वो सुन रहे होंगे तो निश्चित ही वो भी आपको शुक्रिया कह रहे होंगे।
0: बिल्कुल
1: जी। अगला पत्र,
0: शनिवार की विशेष वार्ता में हस्तशिल्प से रोजगार, मोहन रोकड़े से श्वेता सोनी की बातचीत सुनी। चेतना कार्यक्रम में थायराइड के बारे में जानकारी मिश्रा जी से जो श्वेता सोनी की बातचीत थी वो उन्होंने पसंद किया है। सुगम संगीत में सोनू निगम के कुछ नगमे सुने। सोमवार के विशेष कार्यक्रम में हुनर से आत्मनिर्भरता विषय पर अंजलि शिंदे की वार्ता भी इन्होंने पसंद की है। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में श्वेता गीते की वार्ता इन्होंने पसंद की है। साथ ही मंगलवार को विशेष कार्यक्रम में ग्रीष्म ऋतु और हमारा स्वास्थ्य पर नीलम गुप्ता की वार्ता सुनी। विविधा में शायर डॉक्टर हबीब राहत से जो काव्य पाठ का इन्होंने आनंद लिया। सुगम संगीत में अशोक खोसला को सुना। लोक रंजनी प्रतिमा पहारे का पसंद किया है। इसके अलावा बुधवार का विशेष कार्यक्रम जिसमें गर्मी का बढ़ता प्रकोप पर वार्ता थी देवांशु भांडुले जी की। इसके अलावा आगे इन्होंने पर्यावरण से संबंधित बातचीत और कुछ बातें लिखी है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म नायक की कहानी इन्होंने पसंद की है, प्रस्तुति प्रशांत मालवीय की
1: जी।
0: और आगे लिखते हैं कि सप्ताह के बाल जगत, निमाड़ी लोकगीत, फिल्म संगीत, फोन करे गीत सुने सहित युववाणी के सभी क्रम इन्होंने पसंद किए। दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
1: ये
0: हमारे श्रोता हैं,
1: हाँ।
0: सनावद जिला खरगोन के अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे हफ्ते के कार्यक्रम सुने हैं और उस पर ध्यान से जो विशेष लगा है वो हम तक लिख के भेजा है। और ख़ासकर आपकी जो हस्तशिल्प से रोज़गार वाली जो आपने बात लिखी है वो बातचीत आपको अच्छी लगी। दरअसल वोकल फॉर लोकल वाली जो बात है जो एक अभी इस समय बहुत ज़ोरों से है और ख़ासकर ऑनलाइन शॉपिंग होने के बाद सभी लोगों की पहुंच समूचे विश्व तक हो चुकी है
0: जी।
1: तो इसका फ़ायदा उठाकर हमारे बहुत सारे ऐसे जो दस्तकार हैं, जो अच्छे कारीगर हैं, जो
0: जी।
1: अपने घर पर कुछ व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अवसर खुल गए हैं। उसी से जुड़ी हुई ये बातचीत थी, आपको अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों के आप बारे में लिखा है, सबके बारे में अगर बात करेंगे तो हो सकता है 2-3 मेल हम ना ले पाएं, लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सभी कार्यक्रम सुने और लोकरंजनी, युववाणी और ये सब कार्यक्रमों का भी आनंद लेकर आपने उनका हौसला बढ़ाया है, शुक्रिया।
0: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, ग्राम खेगांव से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 27 मई बुधवार का कार्यक्रम आस्था के स्वर बहुत अच्छा लगा, बस इन्होंने इतना ही लिखा है।
1: बहुत खूब, इससे पहले भी शायद 2-3 पहले प्रोग्राम में मैंने इसका जिक्र किया था कि आस्था के स्वर एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो रेडियो के पुराने लिसनर हैं, जो सुबह उठते ही सबसे पहले रेडियो सेट ऑन करते हैं
0: जी,
1: और उसके बाद वो जो आस्था के स्वर कानों में पड़ते हैं और फिर जो दिन अच्छा गुजरता है, आप उसी श्रोता वर्ग से हमें लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पर इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा पत्र नहीं हम प्राप्त करते हैं, धन्यवाद।
0: सोहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से भी बहुत छोटा सा पत्र है, सूरज कुमार ढाक से, साक्षी, ज्योति, ऋतुराज, राजेश अचोले और पूर्णिमा पटेल का। इन्होंने भी यही लिखा है कि आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 25 मई का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। आपके मीत गीत कार्यक्रम में हमारे ईमेल शामिल नहीं होते, क्या कारण है बताइएगा।
1: नाम एक बार फिर से पढ़िए।
0: सोहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से और उनके साथी।
1: देखिए मैंने ये दोहराव इसीलिए जानबूझ के मैंने मनीष जी से कहा कि ये नाम इतना परिचित है
0: जी,
1: तो ये बात तो हम नहीं मान सकते कि आपका शामिल

0: नहीं होते, हाँ प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल नहीं
1: जी
0: हुए हैं, ये बात हो सकती है, लेकिन आप हमारे पुराने श्रोता हैं, लगातार मेल आपके प्राप्त होते हैं और शामिल होते जरूर हैं।
1: बिल्कुल,
0: शुक्रिया।
1: कहारवाड़ी ग्राम जसवाड़ी से जुगेश नागनपुरे, राधेश्याम वंदना, भावना बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का नाम इसमें भी लिखा है।
0: हाँ।
1: हमें आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 25 मई का खेती गृहस्थी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में वाणी महोदय द्वारा नवतपा अधिक मास पर जानकारी दी गई, साथ ही साधना उपाध्याय के गाय निमाड़ी लोकगीत हमें पसंद आए। 27 मई बुधवार का एक ही फिल्म से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में फिल्म नायक की स्टोरी और गीत इन्हें अच्छे लगे। प्रशांत मालवीय की प्रस्तुति थी। आपके मित्र गीत कार्यक्रम में हमारे ईमेल भी शामिल करें, धन्यवाद।
0: जी देखिए, आपके आपके नाम तो इधर उधर से, मतलब अपने मित्रों के साथ भी आपके नाम आ जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: प्रशांत जी की तरफ से आपको धन्यवाद कि नायक की कहानी और उस पर बनी हुई फिल्म और उस फिल्म पर बनी हुई हमारा जो एक ही फिल्म से कार्यक्रम आपको पसंद आया।
1: जी हाँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नेपानगर से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे, और खंडवा से श्यामाबाई रायकवार और इनके परिवार के सभी सदस्य लिखते हैं कि आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। 27 मई का एक ही फिल्म से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में फिल्म नायक की स्टोरी गीत पसंद आए। इसी दिन का आपके मित्र गीत कार्यक्रम भी अच्छा लगा। और ये भी यही लिखते हैं कि आपके मित्र गीत कार्यक्रम में हमारे ईमेल शामिल नहीं होते हैं, क्या कारण? लगभग वैसा की वैसा ही ईमेल इनका है।
0: हाँ हाँ, और पंक्तियाँ भी वही हैं।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, आपका ये हमारा ये जो कार्यक्रम है, और आपका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि वो आपका ही कार्यक्रम आपके मेल से ही बनता है, आपकी फरमाइश से ही बनता है।
1: हाँ।
0: तो आपकी फरमाइश से बनने वाले कार्यक्रम में आपकी फरमाइश ही शामिल नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि प्रत्येक कार्यक्रम में आपका मेल शामिल हो जाए, ऐसी बात नहीं हो सकती, इसलिए है। वरना आपकी इस शिकायत के पीछे मैं वो नहीं देख रहा हूँ, गुस्सा नहीं देख रहा हूँ। एक ऐसा रहता है ना कि जहाँ मित्रता होती है, प्रेम होता है, तो वहाँ बार बार मिलने की आतुरता होती है, वो आतुरता मुझे इसमें नजर आ रही है।
1: जी हाँ। अगला ईमेल शामिल कर रहे हैं कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल
0: जी।
1: लिखते हैं कि 23 मई को सुगम संगीत में सोनू निगम के गाय नगमे पसंद आए। इसी दिन श्वेता सोनी ने और 24 मई को आरती शर्मा ने आपके मित्र गीत कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब पेश किया। 24 मई का सुगम संगीत भी इन्होंने पसंद किया है। भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को इन्होंने सुना। और 27 मई को प्रशांत मालवीय द्वारा प्रस्तुत आपके मित्र गीत कार्यक्रम की पेशकश बहुत ही लाजवाब लगी। जगदीश जौहरी हैं कंडला बंदरगाह कच्छ से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके पत्र के लिए, और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि सुगम संगीत में अनुराधा जी और सोनू निगम, इनके गाए हुए वो जो गीत है
1: जी,
0: वो इन्हें बहुत अच्छे लगे हैं, सभी हमारे श्रोताओं को पसंद आए।
1: गुजरात गांधीग्राम से ये ईमेल लिखा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी ने। आकाशवाणी खंडवा के सभी प्रोग्राम हम सुनते हैं, पसंद आते हैं। 23 मई का सुगम संगीत इन्होंने पसंद किया है, वही सोनू निगम के गाए गीत
0: जी।
1: 25 मई को सुजान सिंह के गाए भजन पसंद आए। और पिछले हफ्ते जो श्वेता सोनी, ममता जी, दीपमाला शिंदे, प्रशांत मालवीय द्वारा प्रस्तुत आपके मित गीत कार्यक्रम आपकी पसंद कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया, लिख रहे हैं आज आपकी पसंद में हमारे ईमेल शामिल होंगे, यही उम्मीद है।
0: हाँ, ये ऐसा करके प्यार भरा दबाव, आग्रह आपने डाल दिया है मनीष जी पे
1: जी।
0: अब मनीष जी बिल्कुल अपनी आंखों को बिल्कुल चौड़ा करके वो आपके मेल को तलाशेंगे।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो लिस्ट में शामिल होगा तो जरूर होगा।
1: हाँ, तो अब अगला ईमेल हम शामिल कर रहे हैं। झिरनिया रतनपुर के हमारे नियमित श्रोता हैं जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह, सचिन, पलक, अंतिम श्रुति, यशराज, किट्टू, वैभव परी और गौड़ परिवार के सभी सदस्य
0: जी।
1: आपके केंद्र से इस हफ्ते का चेतना कार्यक्रम में थायराइड के बारे में जो जानकारी डॉक्टर बीपी मिश्रा से श्वेता सोनी की बातचीत थी बहुत ही लाभदायक लगी। हमारे श्रोता में खंडवा के मिंटू भाई घड़ी वाले से आरती शर्मा की बातचीत अच्छी लगी। सोमवार का गुड मॉर्निंग खंडवा भी पसंद आया, प्रस्तुति दीपमाला शिंदे और श्वेता सोनी की। मंगलवार का विविधा सुनहरे पल, बुधवार का एक ही फिल्म में नायक की स्टोरी कहानी पसंद आई, और प्रतिदिन युववाणी किसानवाणी विशेष कार्यक्रम भी पसंद आ रहे हैं। आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रत्येक दिन के कार्यक्रम आपने सुने, और ऐसा होता भी है कि ये खुद की स्तुति हो जाएगी, लेकिन कभी कभी करना चाहिए। मैं भी एक आकाशवाणी का हिस्सा हुए बिना एक श्रोता के तौर पर मैं जब अपने केंद्र के कार्यक्रम सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर दिन

0: एक दो तीन ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके लिए अगर आप किसी दूसरे केंद्र को भी सुन रहे हो तो आपको वापस आकाशवाणी खंडवा आना ही पड़ता है।
1: वाह।
0: तो मैं आपकी तरह भी सुनकर कार्यक्रमों को देखता हूँ, अच्छा लगता है, और आप लोगों की तारीफ मिलती है, शाबाशी मिलती है, पीठ पर एक पुराने श्रोता की प्यार भरी थपकी मिलती है, तो मेहनत सार्थक होती है।
1: बिल्कुल। हमारे नियमित श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह
0: जी।
1: 23 मई को प्रसारित स्वास्थ्य भेंटवार्ता इन्होंने भी पसंद की है, थायराइड के विषय में जो जानकारी दी गई थी
0: जी।
1: इसके अलावा आगे लिखते हैं कि 26 मई को किसान श्रोताओं का नियमित कार्यक्रम किसान वाणी सुना, ग्राम मोल्टा का माफी के किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल की जो धर्म पत्नी है कमला पटेल जी, इनकी वार्ता सुनी, महिला किसान का कृषि में योगदान इन्होंने पसंद किया है
0: जी।
1: और आगे लिखते हैं कि निमाड़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका कांता जोशी का बहुत ही सुमधुर निमाड़

0: बिल्कुल, हमारे नियमित श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह
1: जी।
0: 23 मई को प्रसारित स्वास्थ्य भेंटवार्ता इन्होंने भी पसंद की है, थायराइड के विषय में जो जानकारी दी गई थी
1: जी।
0: इसके अलावा आगे लिखते हैं कि 26 मई को किसान श्रोताओं का नियमित कार्यक्रम किसान वाणी सुना, ग्राम मोल्टा का माफी के किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल की जो धर्म पत्नी है कमला पटेल जी, इनकी वार्ता सुनी, महिला किसान का कृषि में योगदान इन्होंने पसंद किया है
1: जी।
0: और आगे लिखते हैं कि निमाड़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका कांता जोशी का बहुत ही सुमधुर निमाड़ी लोकगीत भी इन्होंने सुना, पसंद आया, सफल प्रस्तुति हेतु प्रस्तुतकर्ता साथी को हृदय से धन्यवाद
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वो जो वार्ता विशेष की बात की है कि महिलाओं का खेती किसानी में योगदान
0: जी,
1: तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम भी देखिए खेती गृहस्थी, क्योंकि अगर किसान को महिलाओं का घर से समर्थन या खेती में उनका साथ ना मिले तो कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है, और इस बात को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है कि किस तरह से महिलाएं खेती में वो मदद करती हैं, और ये वार्ता उस सभी नज़रअंदाज चीज़ों को सामने लाकर रखती है। आपको बातचीत पसंद आई, हमारे दूसरे कार्यक्रम भी पसंद आए, हमें बहुत अच्छा लगा
0: जी। अगला ईमेल है सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया का
1: जी।
0: दोनों आदरणीय प्रस्तुतकर्ताओं को सादर प्रणाम। रिश्तों के आईने को हमेशा साफ रखना, और आपको जो भी मेल मिल जाए उसे जरूर शामिल करना, क्योंकि विगत सप्ताह हमारे ईमेल शामिल नहीं किए गए। 21 मई का सुनहरे पत्र सुना, आदरणीय चिन्मय दीक्षित जी और नीलम त्रिपाठी जी की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही
1: जी।
0: इसके अलावा विशेष कार्यक्रम में जैव विविधता पर जो वार्ता प्रसारित की गई वो पसंद आई है। हमारे श्रोता में भूपेंद्र सिंह कुकरेजा से जो बातचीत आरती शर्मा की थी वो इन्हें पसंद आई है। साथ ही गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में नौतपा रोहिणी नक्षत्र में लगे इस ग्रीष्म ऋतु के बारे में जाना। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जो जो प्रसारित किया गया उसका इन्होंने उल्लेख किया है अपने पत्र में। आगे लिखते हैं कि 27 मई को विशेष कार्यक्रम में ग्रीष्म ऋतु और सावधानियां विषय पर देवांशु मांडल जी की जो वार्ता थी वो बहुत ही शिक्षाप्रद लगी, जो उन्होंने जानकारी दी गई थी वो भी बहुत पसंद आई है। आगे कुछ प्रस्तुताओं के नाम इन्होंने लिखे हैं, जैसे प्रशांत मालवी जी और आपका नाम लिखा हुआ है, इनकी प्रस्तुति इन्होंने पसंद की।
1: अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: फिल्म शोले का जिक्र किया है
1: जी, शोले के लिए धन्यवाद, मतलब उसकी तारीफ के लिए धन्यवाद
0: जी।
1: और आरती जी, प्रशांत जी, दीपमाला जी, चिन्मय जी की तरफ से भी आपको शुक्रिया कि आपने उनके प्रयासों को सराहा, पसंद किया, धन्यवाद।
0: निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा सुनहरे पत्र कार्यक्रम के हर दिल अजीज मेजबानों को हमारा पुरखुलूस आदाब। आप समझ गए होंगे ये पत्र किसका है।
1: बिल्कुल, लेकिन हमें बताना भी पड़ेगा
0: जी। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा के हमारे नियमित श्रोता है मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और अहमदपुर खेगांव से कैलाश फुलमाली, इनका मिला जुला ईमेल है
1: जी। सभी को नमस्कार।
0: प्रशंसा के रूप में लिख रहे हैं कि गुरुवार को सुनहरे पत्र कार्यक्रम में चिन्मय दीक्षित जी और नीलम त्रिपाठी ने श्रोताओं के पत्र और ईमेल को के जवाब बेहद सटीक, सदे और लाजवाब अंदाज में दिए, दोनों को हमारा साधुवाद। गुरुवार का आपकी पसंद कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। शनिवार को सुनहरे पल और आपके मीतिए गीत कार्यक्रम लाजवाब और यादगार पेश किया गया। रविवार का फोन करे गीत सुने कार्यक्रम प्रस्तुति नीलम त्रिपाठी की इन्होंने पसंद की है। सोमवार गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम की लाजवाब पेशकश, और इसी दिन आपके मीतिए गीत कार्यक्रम दिल की गहराइयों को छू गया। मंगलवार का सुगम संगीत लोकरंजनी कार्यक्रम पसंद किया है। बुधवार को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म नायक की कहानी और गीत सुनकर मन मयूर नाच उठा, प्रशांत मालवीय को बधाई देते हैं। इसके अलावा आगे इन्होंने लिखा है कि युववाणी कार्यक्रम की पेशकश भी हमें बहुत ही पसंद आ रही है, यूथ चॉइस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाए। AIR खंडवा के मनोरंजक और ज्ञानवर्धक सभी कार्यक्रमों के लिए प्रस्तुतकर्ताओं का हमारा साधुवाद। इसके बाद इन्होंने सुझाव लिखा है
1: जी,
0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में राजेश खन्ना मुमताज अभिनीत फिल्म रोटी को शामिल किया जाए तो बेहतर होगा, और ये हमारे नियमित श्रोता हैं मोहम्मद रफीक पवार
1: जी। आपके सुझाव को हमने नोट कर लिया है, और हमारे सारे प्रस्तोता भी सुन रहे होंगे, और उन्होंने भी

0: सकता है कुछ लोगों ने मन बना लिया होगा, और बहुत अच्छी फिल्म थी और गाने निसंदेह आज भी हिट हैं। और बाकी आपने जहाँ युववाणी की बात लिखी है हमारे प्रस्तोता, जो एक तरह से युववाणी और बाल जगत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मंच है, ऐसा कार्यक्रम है जिससे हमें आगे जाके अच्छे प्रस्तोता प्राप्त होते हैं, एक तरह से हमारी पौध तैयार होती है। और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपने उनकी मेहनत को मान दिया है और लिखा है, शुक्रिया। दूसरे कार्यक्रमों के बारे में भी आपने लिखा है, रोज एक दो कार्यक्रम आपने पॉइंट आउट किए हैं और उसकी तारीफ हमें भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप सुझाव हमें ज़रूर दें, हम कोशिश करेंगे। वादा तो नहीं करते कि प्रत्येक चीज़ों पर अमल हो सकेगा जी, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे।
1: और बहुत कुछ ऐसा ही पत्र है कल्लनगंज खंडवा से, कौसर पवार, हसीना पवार, हिना सईद खोकर, अलमास बानू और सबीना जहीर पवार का। अच्छा। इन्होंने भी लगभग वही लिखा है जो इसके पहले के पत्र में था, रफीक पवार जी के पत्र में था।
0: तो इबारत बदली है या कि वो वही है?
1: कुछ थोड़ा सा जो अलग है वो मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने सुनहरेपल, राग रंग, युववाणी, हेलो फ्रेंड्स, किसानवाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति पसंद किए। साथ ही इन्होंने भी सुझाव दिया कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म नागिन के गीत और कहानी सुनवाए जाए।
0: ओके, देखिए नागिन फिल्म कई बार बनी है इस नाम से
1: जी।
0: एक जो पुरानी फिल्म है और जिसमें हेमंत कुमार जी का संगीत है, एक नई फिल्म है जिसमें रीना राय जी का अभिनय है।
1: इसी फिल्म का इन्होंने जिक्र किया है जिसमें सुनील दत्त, फिरोज खान, जीतेंद्र
0: उन्होंने आगे लिखा है जी। माफ कीजिएगा, मैंने पूरा सुना ही नहीं जी, पत्र पूरा कर लें।
1: तो इसी फिल्म के बारे में जिसका आप कह रहे हैं, रीना राय की फिल्म हाँ। नागिन, उसका इन्होंने जिक्र किया
0: जी। ये चाह रहे हैं कि एक ही फिल्म से मैं वो फिल्म शामिल हूं।
1: जी हाँ
0: जी, जो बात मैंने रोटी के लिए कही थी वही नागिन के लिए भी कहूँगा कि हमारे प्रस्तोता कृपया इसे नोट करें और कोशिश करें कि बहुत जल्द ही ये फरमाइश भी पूरी हो सके
1: जी। अगला ईमेल बाजार फैल शेगांव महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद जुनेद और इनके सभी साथी
0: जी।
1: लिखते हैं कि निमाड़ क्षेत्र की सुरीली आवाज़ आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम सुनहरे पत्र के मेज़बान साथियों का हमारा प्यार भरा आदाब। गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के ईमेल और पत्र शामिल किए गए। प्रस्तुतकर्ता थे चिन्मय दीक्षित जी और नीलम त्रिपाठी। इन्होंने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। और इसके अलावा बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म नायक की कहानी और गीत सुनकर दिल झूम उठा। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का जिक्र किया है, गुड मॉर्निंग खंडवा, सुनहरे पल, सुगम संगीत, चेतना और सप्ताह भर के सभी कार्यक्रमों का जिक्र किया है। साथ ही इन्होंने एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म हीरो की कहानी और गीत सुनवाने का सुझाव दिया है।
0: ये वो बढ़ता जा रहा है
1: जी, लिस्ट बढ़ती है,
0: लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब हमें इसके लिए एक विशेष रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपकी फरमाइश भी पूरी हो सके और हमारे पास भी ये रहे कि हमने श्रोताओं की फरमाइश पर ये कार्यक्रम फिल्में प्रस्तुत कर चुके हैं, ताकि हमारे अगले प्रस्तोताओं के लिए भी ये काम हो सके।
1: ये फिल्म हम शामिल कर चुके हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में
0: जी हाँ,
1: फिर कभी नए रंग रूप में हम जरूर
0: हाँ जरूर। और देखिए एक बात होता है ना कि मैं जिस तरह से बात करता हूँ हो सकता है उससे बेहतर तरीके से या अलग तरीके से मनीष जी करें जी। या फिर कोई और भी करें, लेकिन एक बात ये भी है कि कई बार हम जानबूझ के करते हैं, कई बार वो दोहराव हो जाता है, लेकिन प्रस्तोता बदल जाने से कहानी कहने का अंदाज भी बदलता है
1: बिल्कुल।
0: तो पर कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर बार नई फिल्म हो तो आपको भी आनंद आएगा।
1: दादाजी धुनी वाले मार खंडवा से लिखते हैं, हस्सू बाबा, मोइन छोटू, मोहम्मद फाजिल, जामा मस्जिद रोड भीकनगांव से साफिया, अरहान खोकर और अयान खोकर
0: जी।
1: पिछले सप्ताह सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्र और ईमेल शामिल किए गए। दोनों प्रस्तुतकर्ताओं ने बहुत ही निराले अंदाज में जवाब दिए, पसंद किया है। आपकी पसंद कार्यक्रम भी अच्छा लगा, रविवार का फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम अच्छा लगा। साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म नायक की कहानी और गीतों का आनंद लिया और बहुत से कार्यक्रमों का इन्होंने जिक्र किया है। और वही युववाणी कार्यक्रम में यूथ चॉइस कार्यक्रम को फिर से शुरू करें तो मेहरबानी होगी। और सुझाव वही एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म तेजाब के गीत और कहानी सुनवाने का कष्ट करें
0: जी हाँ। और ये फिल्म भी शामिल हो चुकी है, काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन अगर कोई नए सिरे से इसे बनाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यूथ चॉइस की बात पहले भी हमारे एक श्रोता ने कही थी, तो देखिए कुछ जो प्रोग्राम डिसकंटिन्यू होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उसके स्थान पर नए कार्यक्रमों का समावेश होता है
1: जी।
0: लेकिन

0: अगर ऐसा लगता है कि घूम के हम उस कार्यक्रम की तरफ अब आना चाहिए क्योंकि श्रोता चाहते हैं, तो हम निकट भविष्य में हो सकता है कि आपकी ये फरमाइश भी पूरी हो जाए।
1: युवाणी कार्यक्रम में हमारा रोज नया नया क्रम रहता है आकर्षण।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगला ईमेल है ग्राम जामली कला से माणक चंद्र राठौर, पुष्पाबाई राठौर, छेगांव से अशोक वाघे और वंदना वाघे का।
0: जी
1: इन्होंने लिखा है कि श्रोताओं के सुझाव, शिकायत और प्रशंसाओं को कार्यक्रम में जगह दी गई। सुनहर पत्र कार्यक्रम में पिछले सप्ताह, साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम पसंद किया है, फोन करे गीत सुने, गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम, सुगम संगीत, आपके मीते गीत, लोक रंजनी कार्यक्रम अच्छा लगा। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म नायक की कहानी और गीत मस्त लगे। और सुझाव इन्होंने एक बार फिर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के लिए दे दिया है, फिल्म गुड्डी की कहानी और गीत सुनवाएं।
0: जी ज़रूर ज़रूर, आपका सुझाव भी अच्छा है और हमने सुझाव मांगे ही हैं, तो शुक्रिया। और नायक की कहानी और प्रशांत जी का सुनाना आपको मस्त लगा, बहुत अच्छी बात है।
1: हमारे नियमित श्रोता हैं मां नर्मदा, श्रोता परिवार, शिवकोठी, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन,
0: जी
1: निशा सेन, इंदौर से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी।
0: हाँ, क्या लिखते हैं?
1: उन्होंने लिखा है कि पिछले सप्ताह सुनहरा पत्र कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया,
0: धन्यवाद।
1: और इसके अलावा उद्घोषिका कीर्ति जी के विचार इन्होंने सुने हमारे श्रोता कार्यक्रम में, वो पसंद आए। आपकी मीति गीत कार्यक्रम पसंद किया है पंकज लाड़का, साथ ही फिरदौस, कीर्ति, प्रशांत माली, दीप माला शिंदे, आरती शर्मा, सभी के कार्यक्रमों का इन्होंने जिक्र किया है।
0: जी
1: इस सप्ताह युववाणी से निकलकर पहली बार कार्यक्रम प्रतिमा पगारी जी की सुमधुर आवाज़ में सुना, लोकरंजनी कार्यक्रम।
0: अच्छा,
1: मेरे ख्याल से ये प्रतिमा पहारे जी
0: प्रतिमा पहाड़
1: के
0: कहना
1: कहने,
0: चाहते हैं। जी
1: और फिल्म शोले की पटकथा और संवाद वरिष्ठ उद्घोषक विद्याधर मुले जी के साथ सुना, ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म हम टेलीविज़न पर देख रहे हैं। देखते देखते समय समाप्त हो गया। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए विशेष धन्यवाद आपका कर रहे हैं।
0: जी विशेष आपको भी आभार कार्यक्रम सुनने के लिए।
1: साथ ही इन्होंने संध्याकालीन सभा में युवाणी कार्यक्रम के सभी साथियों का जिक्र किया कि अलग अलग विषय पर कार्यक्रम लेकर आते हैं, काफ़ी पसंद आते हैं।
0: जी आपने भी ये बात, ये पंक्ति अभी कही भी थी कि ये, और मैं अपने जब भी सुनहरे पत्र में आता हूँ तो मैं ये कहता भी हूँ कि किसान वाणी, खेती गृहस्थी, युववाणी, इसमें बहुत मेहनत से ये लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
1: जी हाँ,
0: शुक्रिया।
1: चोखड़ा धाम कॉलोनी सनावत से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, वैभव पाल, नवदीत सिंह, प्रद्युम्न सिंह, KPS चौहान लिखते हैं
0: जी
1: कि आकाशवाणी के सिग्नेचर ट्यून के साथ भक्ति संगीत, चिंतन, रामचरित मानस गान पूरा दिन सुहावना बनाए रखती है। साथ ही रेडियो के प्रति श्रोताओं का लगाव कितना है ये जानने को हमें मिलता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तो और जो मेल छूट गया है यकीन जानिए कि वो अगले कार्यक्रम में शामिल ज़रूर होगा।
1: तो अब हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं, करते
0: नमस्कार।
1: हैं नमस्कार। सुनहरे पत्र। अभी आप सुन रहे थे सुनहरा पत्र कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। समाचार प्रभात कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की

0: गार्ड लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20

0: ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करे। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमरीका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मेगाहर्ट्ज पर ये है एफएम खंडवा। पेश खिदमत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गायिका सलमा आगा को।

0: गौहर कानपुरी की ये रचना अभी आपने सुनी सलमा आगा की आवाज में। आकाशवाणी खंडवा से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।
1: फोन करें गीत सुने
2: मुझे कुछ कहना।

0: है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
2: कहिए अपनी बात, सुनिए अपनी पसंद का फिल्मी गीत। हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्रत्येक गुरुवार दिन में 11 बजे से 11:30 बजे तक। टेलीफोन नंबर है 2226063। फोन करें, गीत सुने।
3: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
4: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
5: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
4: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
5: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
6: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
7: ओए होए, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
8: आकाशवाणी खंडवा से सुगम संगीत में लीजिए अब सुनिए सलमा आगा की गायकी का एक और अंदाज, रचना एक बार फिर गौहर कानपुरी की ही है।

0: सलमा आगा की गाई सुगम संगीत रचनाएं अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो
2: बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा। जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
1: आकाशवाणी खंडवा।
0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे।

0: सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायुसेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

क्रांति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था। सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में यह क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहां के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण ने मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर इसके वृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आजादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए ये संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक दासता की बीड़ियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को

मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाकराशि, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सेन जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं। इन परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया क्योंकि हड़ताल तुड़वाने के लिए घड़ों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोइत्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें मान ली गईं। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालन।

अलय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, ये आकाशवाणी।
1: वतन का राग अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये प्रायोजित कार्यक्रम एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे स्निग्धोजीत भौमिक की आवाज़ में छिपकली फिल्म का गाना, गीतकार सोहम मजूमदार और संगीतकार मीमो। लीजिए अब सुनिए भूत बंगला फिल्म का गाना, विशाल मिश्रा, नकश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाज़ें हैं, कुमार के बोल और प्रीतम की है तर्ज़।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: यसीर देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे अमजद नदीम। आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोहेल सेन, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में डबल एक्सएल फिल्म का गाना। गीतकार हैं मुदस्सर अजीज और संगीतकार हैं सोहेल सेन।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया और शालमली खोलगड़े की आवाजों में समीर अंजान का लिखा हुआ और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम एक्शन जैक्सन।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: और आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ड्रीम गर्ल 2 फिल्म से मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कड़ की आवाजें, कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज।
4: When I want you, when I need you, boy you know that I know how to get you. When I want you, when I need you.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौट

ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

0: प्यार।
1: महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में

एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अन्य

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
2: गुना जिले की चिट्ठी, आलेख है रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर नवनीत चौबे की।

गुना जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले विकास और उद्योगों की। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। करीब 1060 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे तो युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा और इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना क्षेत्र में सड़क, अधोसंरचना और विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। रोजगार की दिशा में युवा संगम कार्यक्रम भी खास रहा। जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 850 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 529 युवाओं का अलग अलग निजी कंपनियों में शुरुआती चयन हुआ और मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में 3136 हितग्राहियों को 21,30,00,000 रुपए से ज्यादा के हित लाभ बांटे गए। अब बात पानी और पर्यावरण की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा पर भुजरिया तालाब में विशेष कार्यक्रम हुआ। लोगों ने सामूहिक गंगा आरती की, जल संरक्षण की शपथ ली और पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं कंजा गांव में कूनो नदी के उद्गम स्थल पर भी बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रशासन का कहना है कि कूनो नदी संरक्षण और स्टॉप डैम निर्माण से आने वाले समय में सिंचाई और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। खेती किसानी की बात करें तो खरीफ 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले भर में किसान चौपालें लगाई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव कृषि रथ भी पहुंच रहे हैं जो किसानों को नई योजनाओं और खेती के नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए खाद वितरण किया जा रहा है। किसान सुबह 7 बजे से ई टोकन बुक कर अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है। गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और शपथ अभियान चल रहे हैं। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव

0: उपचार की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील भी की गई। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने पर लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर बाहर जाने की सलाह दी गई है। पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान चला रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोज योग शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव योग सत्रों के जरिए भी लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। विशेष जनजाति समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुंचाई जा रही है। गुना जिला अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में जुट गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले की पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 70 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो नेशनल लोक अदालत में जिले भर के 1382 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। इसमें करीब 2800 लोगों को फायदा मिला और वर्षों पुराने विवाद खत्म हुए। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने उत्कृष्ट छात्रावासों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की तैयारी की है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, कानून और सामाजिक कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: जिले की चिट्ठी अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जी रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे कैसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
3: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात

0: वो कई गुना बढ़ जाती है,
1: जी
0: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
1: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
1: जी, मूल रूप से मैक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
0: जी,
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी,
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बटी लैंगलिंगडो, चाइल्ड सिंगर एंजल, म्यूजिक कंपोजिशन एंड गाइडेंस अजीत होरो, साउंड रिकॉर्डिस्ट मयंक कुमार, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विमलेश चौधरी. दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय CIET NCERT, न्यू दिल्ली, इंडिया. अभी आपने सुना कार्यक्रम दिस इज माई टाउन.

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।

0: साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
1: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
0: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखू तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखू तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं,
6: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का? तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
7: माँ,
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से 3-3 फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।

0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।

0: ब्रिगेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
1: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
0: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश

0: की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: ये था NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
5: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
6: आकाशवाणी खंडवा।

आकाशवाणी खंडवा से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेडियो मित्र मनीष शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम समर्पित कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान फिल्मकार महबूब खान की यादों को। निर्माता निर्देशक महबूब खान के करियर की और हिंदी फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती रही है फिल्म मदर इंडिया। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत आप सभी की पसंद पर। बटिंडा रोड डबवाली से राजन नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल, नारायण इंग्ले, सोपान तायड़े, आशीष मोहरकर, कलमगंज खंडवा से कौसर पवार, हसीना पवार, अलमाज बानू और सबीना जहीर पवार, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल, रचित खुराना और केशु खुराना, ग्राम पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, मोटक्का माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम ज्योति, शुभम देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता, डिम्पल, प्रियांश और भाव्या देवांगन, अहमदपुर के गांव से कैलाश फूलमाली, दीपक और समर फूलमाली, ग्राम सिलोदा से सेवक राम राठौर, प्राचा राठौर, लकड़ बाजार ताज मंजिल खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी, मोइन छोटू और मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता वामिका गंगराड़े, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, घंटागढ़ चौखंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्री, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और आरती कुमारी, यवतमाल शाहूनगर से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और प्रियांशी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़, सिटी दीवाना जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, नांदेड़ से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी राजेश, राकेश और रशिता, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना, शनि मंदिर चौखंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता गौरव, ईशान कार्तिक सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवा से भवानी सहबैस, रिया रोहन अंगद, आदर्श ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती टोप सिंह।

हिमाचल पूर्वी है जल राजेश रेशमा साहू, अंडा नान घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी वर्मा, माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनिता उदय उज्ज्वल और मितांश कटारे, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी और हिमांश, शिवकोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, सपना ओम, द्वारकीबाई सेन, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार भानुप्रिया, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, पालदनाका इंदौर से हसीना मंसूरी और अमीना मंसूरी, सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, शास्त्रीनगर बीड़ से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, सायराज, विशाल सपकाल, जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, रामभाव तांदले, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहिना हसन, नाजिया इब्राहिम, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कबील छिपा, ईशान और पूजा परिहार, खंडवा से शालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर और आयशा खत्री, जामली कला से मार्गचंद राठौर, पुष्पाबाई, प्रियांशु और दिव्यांश राठौर, ग्राम छेगांव देवी से अशोक वाघे, वंदना वाघे और कान्हा वाघे। आप सभी के पसंद पर फिल्म मदर इंडिया का ये गीत, जिसे गाया है शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों ने, गीतकार शकील बदायूनी, संगीत नौशाद का।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह!

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी पसंद कार्यक्रम का सिलसिला जारी रखते हैं और सुनते हैं आप सभी की पसंद। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, पोर्टिका कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक साहू, सीमा साहू, दुल्लापुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस, निम्ना गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, सनावद जिला खरगोन से अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित रितु, मुकेश जगताप, बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, मोहनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरोड़ा, पदमपुर श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति भूमिका अरोड़ा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव साइना, निवान शर्मा, उदयपुर महाराणा प्रताप कॉलोनी से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल, प्रगति नाचानी, राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद प्रदीप यमेकर, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित पायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सरबद और इनके साथी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, बुरहानपुर से मोहन मुदलियार, आर्शिया आरुष, राजेश कुमार, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना से उमंग आकांक्षा, माही मलिक, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, आकार हाइट्स बहादुरा, नागपुर से वैशाली, शैलेश, प्रिंस, एकांश, सुमित, ध्वनि, परी, प्रणीता, सिद्धांत और टुक टुक गभाणकर, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी, शिवन्या अनु गोस्वामी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजेश राजशी और शीतल राजेश, वरवट पकाल बुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, चांदनी चौक गणेश पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विकी नानू, रविंद्र रौनक सेन, पद्मा टोकी नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से ईमेल किया है आनंद जोशी, तनुजा ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी ने। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार के स्वर में अमित खन्ना का लिखा गीत, संगीत बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है दिल से मिले दिल।

0: या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी खंडवा से आपकी पसंद कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए हमारे कुछ और श्रोताओं की पसंद। आप हैं संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल कफार डावर, अब्दुल हक कजिया उलक डावर, अब्दुल रहमान, अब्दुल कादर हमजा डावर, बड़ा बम चौक खंडवा से संजय मारकंडे, ममता मारकंडे, संहिता और संजीता मारकंडे, जगदम्बापुरम खंडवा से वंदना राजवेद्य, शेजल लंबन, शिवानसी और तुलसी पगारे, सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन, प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, कवर कॉलोनी बड़वाह से हमें खत लिखा है प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज शिमाली ने, ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाक से, भीकन गांव से संतोष सातले, चंदन, सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र और कंचनबाई सातले, बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और मोहम्मद अफजाल मलिक, ग्राम रतनपुर झरनिया से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन, झरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, श्रुति, यशराज सिंह गौड़, दिवराज और किट्टू, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश और सुनीता मालाकार, इंदौर से अनिल कवचाले, सभिया, सुषमा और इनके साथ ही, प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार, अंजलि, पिंटू, संदीप और यथार्थ कुमार खंडाले, ओंकारेश्वर रोड ग्राम थापना से राजेंद्र सिंह भदौरिया, ज्योति भदौरिया, उदयराज और अश्विन राज सिंह भदौरिया, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सुदामा पेंटर बाबू, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया महोबिया, और धर्मपुरी धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, आयान, फैजान, सुमेरा, कशिश और साइमा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मेरे हुजूर का ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का और गायक स्वर मोहम्मद रफी का है।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम

आपकी पसंद कार्यक्रम में श्रोताओं की पसंद के फिल्मी गीतों का आज का ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र मनीष शर्मा के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से लीजिए पेश है प्रोग्राम रंग तरंग। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

मुख पे।

कैलाश खेर का लिखा ये गीत था झूमे रे एल्बम से। गीत और संगीत थे कैलाश खेर के और आवाज भी थी कैलाश खेर की। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अमर अकबर एंथनी फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी। आनंद बख्शी के लिखी ये कव्वाली थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: रियाज़ुर रहमान सागर का लिखा ये गीत आपने सुना अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में। एल्बम थी कभी तो नजर मिलाओ।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
4: कुर्बानी। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
5: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
6: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
6: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बटवारा फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का गाया, हसन कमाल के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: सितम एल्बम से ये गजल आपने सुनी चंदनदास की आवाज में, बशीर बद्र का कलाम था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक गीत आप सुन रहे थे। रंग तरंग कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। रंग

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 2रे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
4: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है।

0: लगता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये दुगाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ओपी नैयर का ये सुरीला संगीत था। मंजू सुल्तानपुरी के बोल मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म का गीत था। और इसके पहले आपने सुना जानवर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा।

रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये दो गाना आपने सुना अनजाना फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे। कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं। विविध भारती के साथ सुरीले सफर में आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओं, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करते, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान, एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी कहीं, और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं थोड़े से समय में, हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओं, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया, उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं, www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉगिन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज, जो भी आप कहें या इबारत कहें, उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है, तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट। मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था, जहां इस मौसम में सैलानी खूब आया करते हैं। हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा और कहेगा, प्रीत तोरी सांची। परदेसी ने फल, कपड़े और टोकरियां भी खरीदी। किसी सपनों की रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं। साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं, इन शब्दों को कैसे चुनते हैं, और हमारे जो श्रोता नए हैं वो भी हमें अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें।

कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोताओं, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद बर्फीली चादरों में सिमटी धुंध के नेपथ्य में लुका छिपी करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध के घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है, यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है। और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है, इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है। और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है, किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वती गांव के लोगों के सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नज़ारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, नेपथ्य में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं जरूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना। और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे। उपेन अय्यर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सम्मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओं हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है। वैसे हमें खरीदना तो ज़रूर चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हाथ से बनी हुई होती हैं, और इन चीज़ों को खरीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मौसम पहाड़ों चांद रास्ते परदेसी बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ एक गीत भी इन्होंने सुझाए हैं बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहां की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियां और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं। पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोताओं, और वहां पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं, तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहां फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी, शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओं। तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए

जॉय मुखर्जी और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी। SH बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसी ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती है, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताजी हवा, चांदनी रातें, परदेशियों से मिलना, मोहक दृश्य, यकीनन सब कुछ अच्छे लगते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति की एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृति है, जो अपनी विशालता, शांत वातावरण और अलौकिक दृश्यों से हर किसी के मन को असीम सुकून और आनंद से भर देती है। इन खूबसूरत पहाड़ों की ढलान घने देवदार, पाइन और ओक के पेड़ों से ढके रहते हैं, जो प्रकृति की मखमली हरी चादर जैसे दिखते हैं। साथ ही पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलने वाले जलप्रपात और कलकल बहती हुई नदियां पहाड़ों के शांत वातावरण में एक मधुर और प्राकृतिक संगीत घोल देते हैं। जो भी यहाँ आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अगर फिरदौस बरवे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिछली गर्मियों में मुझे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल खजियार जाने का अवसर मिला। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थी। वहां का सुंदर मैदान और छोटी झील देखने लायक थी। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया।

खजियार की ये यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा बन गई। आप ये एक बात बताएं श्रोताओं कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियाँ हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसे ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये साफ सुथरी रहती हैं, और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें ज़रूर बताएं। और कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी? एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं।

जहां मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहां मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो।

संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओ, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियां, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती है। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दीयों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेटकर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज्यादा सुकून देता है, जो सर्दी का मौसम सा होता है वो पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है। आवाज आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहां जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताजा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है, तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं, बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें जरूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटे बर्फ की चादरें में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतः ही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहां अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हाँ, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहाँ की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गाँव का है वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है, ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थी। पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ, मुझे पहाड़ों पर जाना, वहां घूमना, वहां के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूं तो पहलगांव, शिलोंग और खजिया बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओं, वो एक देश है वहाँ के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं या हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीज़ों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं। और अगर हम बात करें शिमले की बात करें या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफर क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नजारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मजा आता है और वहां की शीतलता मन को सुकून पहुंचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोताओं, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे, हरे भरे ऊंचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊंची चोटियां, उनसे लिपटा उदक से पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल, ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में, जी हाँ दो डब्बा बेटा शिखर का, जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

कलाकार बता दें श्रोताओं, और मेरे सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है संवेदना पर। आज के आधुनिक दौर में हमारी संवेदनशीलता कहीं खोसी गई है। हमें इंसान बनाने वाली वो भावनाएं, वो संवेदनशीलता बहुत ही कम देखने को मिलती है। हम इतने आक्रामक और संवेदनहीन हो गए हैं कि हमें एआई कहना गलत नहीं होगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हम में भावनाओं की कृत्रिमता बढ़ती जा रही है। एक ऐसा दर्द पनप रहा है जो कि तब होता है जब शरीर से तो कोई सामने हो पर आत्मा से गायब हो।

उपनिषद में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग करके ही भोग करो। जो स्वयं छोड़ता है वही दूसरों को दे पाता है। लेकिन आज मदद करने की भावना जैसे खत्म ही हो गई हो। व्यक्ति खुद पर आई समस्या के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा करता है, लेकिन वहीं दूसरों को परेशान देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। जिनके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, कोई वजह होती है, कोई लक्ष्य होता है, वो लगभग

किसी भी कैसे को सहन करते हुए खुद को जीने और दूसरों को जीवन देने के रास्ते तलाश कर ही लेते हैं।

संस्कृत में कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। हम सोचते तो बहुत हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कार्ल जंग ने कहा था, सबसे तीव्र संघर्ष यदि पार कर लिए जाएं, तो अपने पीछे ऐसी सुरक्षा और शांति की अनुभूति छोड़ जाते हैं जिसे फिर आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता। और फ्रेडरिक नाइट्स की माने तो जो हमें मार नहीं पाता वो हमें और अधिक मजबूत बना देता है। और महाभारत में भी कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, यह आत्मा ये ऊंचाई कमजोरों को नहीं मिलती।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन से संबंधित है। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: कहने के लिए नहीं कह, देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले। अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, 2 दिन का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। दोनों शहरों में आज भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और रोजगार विभाग द्वारा कल युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया। और गुना में दिव्यांगजन जागरूकता, संवेदनशीलता एवं समावेशी अभिषण योजना विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी

0: दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है।

0: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कशफीन नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
2: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफी ने। श्रोता और सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए इजाजत, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ಹೇಳಿ. सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार. आरती आपको भी मेरा नमस्कार.
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार.
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है. गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना बस पूछिए मत.
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है.
1: हाँ ये बात भी है.
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है. बस
1: सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है. अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तो तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना. क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए है ना. क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है.
1: बिल्कुल. और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है. बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए.
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए. विविध भारती सुनते रहिए है ना. और आज के विषय बता दें.
1: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर. क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं. तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं कितना करते हैं. तो इसके बारे में आप बताइए. या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो. और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में
0: के चल्लमल नारियल अम्मा उनकी बारे में हम जानकारी देंगे. और साथ ही मुझे कुछ कहना है इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है. इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है. इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना.
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंसी
0: गई थी.
1: बिल्कुल. और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं. फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ. तो ये चीज से आप बाहर निकले तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में. और भी तो विषय है.
0: और आज एक खास दिन है आरती ईद उल अजहा यानी बकरी ईद भी है आज. तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं बधाई देते हैं. और साथ ही उपयोगी टिप्स ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से. और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें. तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है. पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है लाभ उठा सकती है. तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे.
0: और आप क्या करें
1: एक गीत सुनते हैं.
0: तो सुनते हैं गीत.

0: तो भाई सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
1: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
0: बहुत बहुत
1: मुबारक।
0: मुबारकबाद देते हैं
1: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
0: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
1: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते
0: जी
1: हैं।

0: हाँ तो सुनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये।
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो भी अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है।
0: सच में।
1: वैसे ही कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना, जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुशी खुश रहते हैं हमें ना उनके
0: बिल्कुल
1: काम।
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है, कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए, हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
1: जी
0: आज हम बात
1: के
0: करेंगे
1: चेलम्मल
0: जी,
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की, और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, यानी जैविक तरह की उन्होंने
0: जी
1: खेती की।
0: बिल्कुल। और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल। और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं,

0: जहाँ वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों के फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
1: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
0: और चल्लमल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेल्लमल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
1: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए,
0: जी
1: तो वो परागण के लिए कि बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी, तो
0: देखिए।
1: उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षक की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
0: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चेल्लम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
1: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
0: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
1: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
0: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
1: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छूले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
0: और अब एक संदेश सुन ले।
1: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
1: बिल्कुल आ रहे हैं, आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: हाँ बिल्कुल, वो तो
0: रहा
1: पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए
1: ये तो होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: सौ
0: बोलना
1: झूठ बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है।
0: उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं,
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो
0: जी
1: उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ।
0: जी एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में

0: जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने, मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है। कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं। इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूं, करता कुछ नहीं है। तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। उन्हें
1: बिल्कुल
0: सिखाए, और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का वो जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम
0: जी
1: हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए
0: क्या बात है।
1: ताकि वो और आगे कर सकें।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं, और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं। हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सहेली सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें, तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती
1: दिल की बात.
0: सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये
1: जी
0: बहुत सही बात लिखी है
1: बिल्कुल.
0: ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते. और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं. सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें

0: केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है, उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैया जरूर रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो, जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए, जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
0: बिल्कुल,
1: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें,
0: जी
1: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
0: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
1: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
1: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना, बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मिया होती है, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना, तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
0: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं।
1: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: बिल्कुल, और श्रोता जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है, जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। यह दलदल की तरह है।

0: इसलिए है क्योंकि शुरुआत में ये सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने
1: बिल्कुल
0: लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी, अरे ये गेम मतलब जो गेम है, जो जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं
0: जी
1: और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर
0: और
1: पड़ता
0: ये
1: है।
0: जो गेमिंग जो है ना, जो होते हैं ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी
1: तो
0: उन्हें
1: भी
0: कुछ पॉइंट्स
1: हाँ
0: अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं।
1: जी
0: तो ये बच्चे, और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है।
1: बिल्कुल
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, दीपा
1: हाँ जी कोई
0: सॉरी
1: नहीं।
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेल कूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने,
0: सुनते हैं गीत।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर
1: बिल्कुल,
0: लेते
1: बहुत
0: हैं।
1: से ऐसे गेम आ गए हैं खतरनाक।
0: जी
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही
1: सही
0: है।
1: बात है, फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे
1: बिल्कुल,
0: हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना, वो सिर्फ सीमित मात्रा
1: बिल्कुल
0: तक
1: वो
0: हो।
1: मनोरंजन तक ही रहना चाहिए,
0: जी
1: बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए।
0: जी और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना
1: जिंदगी की
0: चाहिए?
1: रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई है,
0: धीमी हो गई
1: क्योंकि
0: है।
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ
0: जी
1: हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है। तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है।
0: जी
1: तो कभी कभी ये होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: तो यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड
1: कोई आपके
0: कम।
1: घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है, थोड़ी दूर तक है तो वो आपका नेट का आसानी से उपयोग कर सकता है, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन ऐप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन के स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे ऐप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का
1: एक ही
0: करेंगे
1: कर
0: कि
1: रहे हैं,
0: टाइम, तो सारे अगर ऐप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है। तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें, उसे उसी जगह पर ही लगाएं, जिससे कि और बाकी उपकरण उसे उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको
0: और
1: इंटरनेट की।
0: राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजेंटल इन्हें आड़ा रखें। यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए ना।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सकें वाईफाई, और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले,
1: बिल्कुल, एक गीत सुन
0: सुनते
1: लेते
0: हैं
1: हैं।
0: गीत।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लेके भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिखकर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उन्होंने कहा कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
0: अरे
1: बात है। तो
0: देखा,
1: पढ़ाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे दोस्त होता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: और
0: क्योंकि
1: अभी
0: अति हर चीज के लिए भी
1: अब
0: बुरी होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती, आज की
1: आज की
0: मुलाकात
1: मुलाकात बस
0: बस
1: इतनी।
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की है।

0: हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कंबाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगी हुई है, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिस्नर हैं आप।
1: यही जान लीजिए कि हम इसी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6 साल जब से हम बहुत संभाल हैं, सब से सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे हाँ आप जी, क्या जी, करते हैं, खेत में काम करते
1: जी,
0: हैं?
1: जी पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इस समय गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं, अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते
1: तो हैं? गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जो जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा के जी
0: नमस्कार।
1: मैडम खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए, अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं
1: जी।
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने, चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ।
1: और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के। इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायांकित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापस से यूट्यूब पे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायांकित।
1: छायांकित में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या है कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है यहाँ भी, मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के, मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाएं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी पूरे हुए हैं मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है। नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ, दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ, खुराक में ही है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और इससे।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं
1: जी,
0: तो नए बनाते हैं या पुराने?

0: उसको रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से, कट फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं।

0: धान का पौध बोआ है वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
1: क्यों? मतलब इसको हटा देंगे?
0: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
1: हाँ।
0: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
1: अच्छा, दोबारा लगेगा तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
0: मेहनत तो है मैडम जी।
1: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
0: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं।
1: बाजरी के आटे की?
0: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
1: अच्छा, मोठ का भी?
0: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं, 10 बजे शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं। ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
0: हाँ जी, हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
1: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
0: हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल
1: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
1: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर को हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया, और शुक्रिया विविध भारती जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं, और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा। ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी,
0: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैं सिलचर पे रहते हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा, एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ, सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए, तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुना है गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्लिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करवद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002466228602888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287022888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

सामिन, चांद अपने हर रूप में बहुत सुंदर है। चांद की कलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है और हमें हर पल को जीना सीखना चाहिए। मैं सोचती हूं कभी कभी कि जीवन तो चौदहवीं का चांद होना चाहिए। हाँ, पूर्णता के निकट लेकिन पूर्णता से कुछ कम। थोड़ी सी कसक, थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा अधूरापन समेटे। एक बात कहूं, कभी कभी प्यार पूनम की रात में भी अमावस्या प्रतीत होता है ना।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहां, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों? खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है, न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ, काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम आधार होता।

एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओ, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कैलाश सिंह और साथियों के गाए पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत।

श्रोताओ, हम सुन रहे थे कैलाश सिंह और साथियों से पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी खंडवा है। आइए अब सुने युववाणी कार्यक्रम।

0: सात रंगों सा सजा है आज का ये कारवा, इंद्रधनुष की तरह खिल उठेगा हर समा। सुर संगीत और बातों के रंग संग शुरू होता है आपका अपना प्यारा कार्यक्रम युववाणी। साथियों, आपकी रेडियो दोस्त पलक का आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और इन दिनों तो नौतपा भी चल रहा है। अब गर्मी का असर बाहर इतना दिखाई दे रहा है तो कुछ तो असर हमारे कार्यक्रम में भी होना चाहिए। तो नोट कीजिए हमारे आज के गर्मा गर्म प्रश्न। चलिए बताइए, वो कौन सी भारतीय नदी है जो भीषण गर्मी में अक्सर सूख जाती है और उसे मरुभूमि की गंगा भी कहा जाता है। और हाँ, ये भी बताइए कि क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली हॉक आई तकनीक, जो गर्मी में धूप के कारण पिच से भाप निकालने पर भी सटीक DRS निर्णय देती है, मूल रूप से किस खेल के लिए बनाई गई थी। साथियों, इन गर्मा गर्म प्रश्न के उत्तर हम ढलती शाम के साथ घुलती ठंडक में यानी कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तब तक सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, हर रविवार युववाणी में प्रसारित किया जाता है आपके फरमाइशी गीतों का क्रम
5: हेलो फ्रेंड्स,
4: जिसमें हम करते हैं आपसे आपके दिल की बातें और सुनवाते हैं आप ही के पसंद के फिल्मी गीत।
6: किसका है ये तुमको इंतजार में होना?
4: तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। साथियों, हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच आकाशवाणी खंड।

0: सेवा का टेलीफोन नंबर है 2226063 और खंडवा का एसटीडी कोड है 0733।
1: तो फोन करना ना भूलें। कार्यक्रम है हेलो फ्रेंड्स।
2: साथियों, कल्पना कीजिए, 30 वर्ष का पति जेल की सलाखों के पीछे खड़ा है और बाहर उसकी युवा पत्नी खड़ी है जिसका बच्चा हाल ही में मृत हुआ है। इस बात की पूरी संभावना है कि शायद इस जन्म में पति पत्नी की भेंट ना हो। ऐसे कठिन समय पर इन दोनों ने क्या बातचीत की होगी, कल्पना मात्र से आप सिहर उठेंगे। मैं बात कर रही हूँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे चमकते सितारे विनायक दामोदर सावरकर की। ये परिस्थिति उनके जीवन में तब आई जब अंग्रेजों ने उन्हें कालापानी की कठोरतम सजा के लिए अंडमान भेजने का निर्णय लिया और उनकी पत्नी उनसे जेल में मिलने आई। मजबूत हृदय वाले वीर सावरकर ने अपनी पत्नी से एक ही बात कही, तिनके तिलिया बिनना और बटोरना, फिर उससे एक घर बनाना, उसमें बाल बच्चों का पालन पोषण करना। यदि इसी को परिवार और कर्तव्य कहते हैं तो ऐसा संसार तो कौवे और चिड़िया भी बसाते हैं। अपने घर परिवार और बच्चों के लिए तो सभी काम करते हैं। मैंने अपने देश को अपना परिवार माना है, इसका गर्व कीजिए। इस दुनिया में कुछ भी बोए बिना कुछ उगता नहीं है। धरती से ज्वार की फसल उगानी हो तो उसके कुछ दानों को जमीन में गड़ना ही होता है। वो बीज जमीन में खेत में जाकर मिलते हैं, तभी अगली ज्वार की फसल आती है। यदि हिंदुस्तान में अच्छे घर का निर्माण करना है तो हमें अपना घर कुर्बान करना चाहिए। कोई ना कोई मकान ध्वस्त होकर मिट्टी में ना मिलेगा, तब तक नए मकान का नवनिर्माण कैसे होगा। यमुना बाई, बुरा ना माने, मैंने तुम्हें एक ही जन्म में इतने कष्ट दे दिए कि यही पति तुम्हें जन्म जन्मांतर तक मिले, ऐसा कैसे कह सकती हो। यदि अगला जन्म मिला तो भेंट होगी, अन्यथा यहीं से विदा लेता हूँ। अब सोचिए, इस भीषण परिस्थिति में मात्र 25-26 वर्ष की उस युवा स्त्री ने अपने पति यानी वीर सावरकर से क्या कहा होगा। यमुना बाई धीरे से नीचे बैठी और जाली में से अपने हाथ अंदर करके उन्होंने वीर सावरकर के चरणों को स्पर्श करके उसकी धूल अपने मस्तक पर लगाई। सावरकर चौंक कर पूछने लगे, ये क्या करती हो। अमर क्रांतिकारी की पत्नी ने कहा, मैं ये चरण अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूँ ताकि अगले जन्म में कहीं मुझसे चूक ना हो जाए। अपने परिवार का पोषण और चिंता करने वाले मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन समूचे भारतवर्ष को परिवार मानने वाला मेरा पति है, इसमें बुरा मानने वाली क्या ही बात है। आप चिंता ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम इसी स्थान पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या जबरदस्त ताकत है उस युवावस्था में पति को काला पानी की सजा पर ले जाते समय, कितना हिम्मत भरा वार्तालाप है। सचमुच क्रांति की भावना कुछ स्वर्ग से तय होती है, कुछ संस्कारों से। ये हर किसी को नहीं मिलती। आज वीर सावरकर के जन्मदिवस पर उन्हें हमारा सादर नमन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, सुकून शब्द से आप सभी वाकिफ होंगे। ये वो चीज है जिसे पाने के लिए बड़े से बड़ा व्यक्ति भी तरस जाता है, और जिसे मिलना होता है उसे सूखी रोटी खाकर भी मिल जाता है। हम सभी का सुकून पाने का तरीका अलग होता है। कोई सुकून दूसरों में ढूंढता है, तो कोई अपने आप को पाकर ही खुश हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप गंगा नदी के किनारे बैठे हों और जब ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छूती है और नदी का साफ पानी धीरे धीरे बहता दिखाई देता है, तो मन की सारी चिंताएं दूर होने लगती हैं। गंगा की लहरों की मधुर आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें प्यार से कुछ कह रही हो। पक्षियों की आवाज और मंदिरों की घंटियां वातावरण को और भी शांत बना देती हैं। उस समय मन में एक ही खुशी और सुकून महसूस होता है। बस यही वो सुकून है जिसे पाने के लिए लोग दिन रात परेशान होते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये सुकून तो हमारे अंदर ही है, बस हमें शांत मन से इसे ढूंढना है।

साथियों, कहते हैं जब हमें अपने दुख ज्यादा लगने लगे तो हमें हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, उनके सामने हमारे दुख हमें छोटे लगने लगेंगे। अब भगवान ने हमें आंखें दी हैं जिससे हम इस संसार को देख सकते हैं और अपने मन मुताबिक काम भी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दृष्टिहीन या दृष्टि बाधित होते हैं, लेकिन फिर भी वे हमारी ही तरह नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। साथियों, भारत सरकार और राज्य सरकारें दृष्टिबाधित नागरिकों के सशक्तिकरण, शिक्षा और आजीविका के लिए कई प्रमुख योजनाएं भी चला रही है। इसमें वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और स्वरोजगार के लिए ऋण भी शामिल है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि कमजोरी इंसान के अंदर नहीं होती, कमजोर इंसान होता है जो हर छोटी छोटी मुसीबतों में हार मान लेता है, उसका सामना डटकर नहीं करता। इंसान में हुनर, सीखने की ललक और कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए, तो वो हर परेशानी से आसानी से निपट सकता है, फिर चाहे वो दृष्टि सहित इंसान हो या दृष्टि रहित। अब देखिए ना, मेरे एक पसंदीदा गायक हैं जो कि दृष्टिहीन हैं, लेकिन फिर भी उनकी गायकी सुनकर आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। आइए आपको भी सुनाते हैं।

साथियों, इतनी मेहनत के बाद अब मुझे आलस आने लगा है। अब देखिए ना, बाहर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से ठंडी ठंडी कूलर या एसी की हवा खाने से आलस आना स्वाभाविक है। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, कल से मेहनत करेंगे या अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, जैसी बातें धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। यही आदत आगे चलकर आलस का रूप ले लेती है। आलस केवल काम ना करने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे सपनों और सफलता के बीच की सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकता है। एक आलसी व्यक्ति अवसरों को खो देता है, जबकि मेहनती व्यक्ति वही अवसर पकड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, इसलिए मेहनत करने के लिए खुद को प्रेरित करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना और छोटे छोटे लक्ष्य बनाना आलस को दूर करने का सबसे आसान तरीका है। साथियों, हमेशा याद रखें, मेहनत आज की जाएगी तभी सफलता कल मिलेगी।

साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, सफर में धूप तो बहुत होगी, तब सको तो चलो, भीड़ तो बहुत होगी, नई राह बना सको तो चलो, माना कि मंजिल दूर है, एक कदम बढ़ा सको तो चलो, मुश्किल होगा सफर, भरोसा है खुद पर तो चलो, हर पल हर दिन रंग बदल रही है जिंदगी, तुम अपना कोई नया रंग बना सको तो चलो, राह में साथ नहीं मिलेगा, अकेले चल सको तो चलो, जिंदगी के कुछ मीठे लम्हे तुम बुन सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, तुम ढूंढ रहे हो अंधेरे में रोशनी, खुद रोशन कर सको तो चलो, कहां रोक पाएगा रास्ता, कोई जुनून बचा है तो चलो, जलाकर खुद को रोशनी फैला सको तो चलो, गम सहकर दुनिया बांट सको तो चलो, खुद पर हंसकर दूसरों को हंसा सको तो चलो, दूसरों को बदलने की चाह छोड़कर खुद बदल सको तो चलो। साथियों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम इंद्रधनुष यही समाप्त होता है, लेकिन रुकिए, अभी एक गाना बाकी है।

चलिए अब शुरू में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, वह कौन सी भारतीय नदी है जो भीषण गर्मी में अक्सर सूख जाती है और उसे मरुभूमि की गंगा भी कहा जाता है। तो साथियों, लूनी नदी जो कि राजस्थान में स्थित है, इसे मरुभूमि की गंगा भी कहते हैं। क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली हॉक आई तकनीक, जो कि गर्मी में धूप के कारण पिच से भाप निकालने पर भी सटीक DRS निर्णय देती है, मूल रूप से किस खेल के लिए बनाई गई है? तो साथियों, ये तकनीक टेनिस खेल के लिए बनाई गई है। इसी के साथ आपकी रेडियो दोस्त पलक को दे इजाज़त कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी खंडवा। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सत्य पे सत्ता इस फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओ। गुलशन बावरा का एक गाना संगीतबद्ध किया है राहुल देवबर्मन ने और आवाजें भूपेंद्र सिंह सपन चक्रवर्ती किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन की।

0: जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म खट्टा मीठा का गीत आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
2: उसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

और प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर के साथ तलत अजीज की आवाज में मख्तून मोहिद्दीन का कलाम, मौसीकी खयाम की फिल्म बाजार।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी खंडवा से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से और 7 बजने को हैं, आपको सुनवाते हैं हिंदी समाचार। इसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री DK शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: इस यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.2 MHz पर यह है आकाशवाणी खंडवा।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: हम बने हैं साथी, निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा की। ट्यून कीजिए FM बैंड 101.2 MHz या डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा, निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: हेल्पलाइन स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, हर रविवार युववाणी में प्रसारित किया जाता है आपके फरमाइशी गीतों का क्रम
2: हेलो फ्रेंड्स,
1: जिसमें हम करते हैं आपसे आपके दिल की बातें और सुनवाते हैं आप ही के पसंद के फिल्मी गीत।
3: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना।
1: तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपने पसंद

0: पसंदीदा फिल्मी गीत। साथियों हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। आकाशवाणी खंडवा का टेलीफोन नंबर है 2226063 और खंडवा का STD कोड है 0733।
1: तो फोन करना ना भूलें। कार्यक्रम है हेलो फ्रेंड्स।

0: तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: FM 101.2 MHz पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
1: तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला।
0: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: श्रोताओ, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.2 MHz पर। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुने भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PMsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के अस्थि कलश आज भोपाल से दिल्ली भेजे गए, सांची में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के हर राज्य का कृषि रोड मैप बनेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्सव और उमंग के साथ मनाई गई और प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, आज 46 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और महामोदयान के पवित्र अस्थि कलश आज विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित विश्व धरोहर बौद्ध तीर्थ सांची में इन अस्थि कलश को सशस्त्र सुरक्षा बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पवित्र अवशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि
1: आज मॉर्निंग में ही जो भगवान शिष्य थे उनकी पवित्र जो अस्थियां हैं दर्शन के लिए मंगोलिया ले जाने के संबंध में आज भारत सरकार के प्रतिनिधि भी और साथ में ही जो हमारे यहाँ सोसाइटी है महाबोधि सोसाइटी उनके प्रतिनिधि सभी उपस्थित थे और उनकी सबकी उपस्थिति में आज पवित्र अस्थियों को इसको बाहर निकाला गया डबल लॉक से। और एक जो परंपरा यहाँ है, जब भी पवित्र अस्थियां बाहर निकाली जाती हैं, रिलिक्स बाहर आते हैं, तो सबसे पहले जो स्थानीय स्तर पर दर्शन के लिए श्रद्धालु रहते हैं वो दर्शन करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना के बाद एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का

0: अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
1: हर एक राज्य का हमें कृषि रोड मैप बनाना है, हर एक राज्य, हम पूरा सहयोग करेंगे। यहां आपके कृषि का रोड मैप बनाइए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी उपयुक्त है, और उसके साथ साथ फसलवार भी रोड मैप बनेंगे। खेत बचाओ अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर है, उनको धरती के स्वास्थ्य की भी चिंता है, भारत की जनता के लिए उनकी हर सांस चलती है, किसानों के हित ऐसी है। लगातार खेत बचाओ अभियान पे जोर दे रहे हैं, उस पर कल प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा होगी, संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है। जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाएं।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने देश के हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी है। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र जी के निधन पर गहन दुख जताया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बद्र ने अपनी शायरी के माध्यम से मानवता के साथ जीने का संदेश दिया। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत, भाईचारे और सौहार्द के वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन चैन और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। देवास जिले में ईद का पर्व हर्षोल्लास, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। धार में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन पहली बार CBSE द्वारा OSM प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN

0: डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया है कि
1: अभी आगे आने वाले मौसम की बात की जाए तो फिलहाल अभी 2 दिनों के अंदर जो है वो सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जो है वो डे 1 के लिए निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जैसे जिलों के अंदर दिया गया है। साथ ही दतिया और भिंड जैसे जिलों के अंदर डे 1 के अंदर ऑरेंज हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। डे 2 के अंदर भी हीट वेव जो है वो प्रदेश के जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट से हैं उसके ऊपर देखने को फिलहाल अभी मिलेगी। लेकिन साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने जा रहा है कल से, तो उसके होते हुए जो है वर्षा की गतिविधि हमारे प्रदेश के संभागों के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो काफी बढ़ेगी। और कल जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो शिवपुर, मुरैना जैसे जिलों के अंदर हेल स्टॉर्म का भी, थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म का 50-60 KMPA के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामिघारा में शुरू होने वाले अंडर-18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पूल ए में रखा गया है। पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें सम्मिलित हैं। भारत कल कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल की ट्विसा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान 109 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश शासन द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में मध्य प्रदेश को 100% साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कटनी द्वारा नगरवासियों को निमित्त एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान वाणी कार्यक्रम।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय।

आज का किसानवाणी कार्यक्रम का साथ छे आपको अपनो भाई जगदीप सिंह फरे। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाला सब किसान भाई बहनों का हमारी राम राम। किसान भाई बहनों, हमारा देश में कई जाति धर्म न संप्रदाय न का मानने वाला भाई बहन रज न एकाज कारण हर आने वाला दिन कोई न कोई संप्रदाय का भाई बहन का वार त्यौहार भी अवतार रज। तो उज कड़ी में आज छे 28 मई न इन्हीं तारीख में आज छे हमारा मुस्लिम संप्रदाय का भाई बहन को त्यौहार ईद उल जुहा या ईद उल अजहा, जहाँ हमारा देश में बकरीद भी कही जाए। किसान भाइयों, इस्लाम धर्म में बकरीद या ईद उल अजहा को खास महत्व छे अल्लाह का प्रति अटूट प्रेम, त्याग और आज्ञाकारिता का दर्शवनु। यह त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम की उन्हीं महान कुर्बानी

की याद में मनाया जाए जेमा वो अल्लाह का हुक्म पर अपना बेटा इस्माइल हजरत का कुर्बान करने का लेना तैयार हो गया था। किसान भाइयों, अगर हम इन त्यौहार का मुख्य बिंदु ने की बात करें तो इनमें छे कुर्बानी, बलिदान या त्याग की भावना, दान पुण्य और भाईचारा की भावना न धार्मिक मान्यता की भावना। बलिदान या त्याग का को मतलब छे अपनी किनी प्रिय वस्तु या धन को त्याग करनो ताकि व्यक्ति में अहंकार खत्म होए न अरु ईश्वर के प्रति समर्पण भावना बढ़। दान पुण्य न भाईचारा से मतलब छे कुर्बानी, बलिदान या त्याग करी गई वस्तु ख तीन बराबर हिस्सा न बांटनु जेम एक हिस्सो गरीब अरु जरूरतमंद न का लेना, दूसरो पड़ोसी अरु रिश्तेदार न का लेना न अरु तीसरो अपना परिवार का लेना रहज जेका सी समाज न संबंधी न भाईचारो बढ़ज न तीसरो खास बिंदु छे धार्मिक मान्यता। मतलब इना त्यौहार ख मनावना का पीछे आसी मान्यता छे कि जब हजरत इब्राहिम अपना बेटा की बलि देने गया तो ईश्वर उनकी परीक्षा से प्रसन्न हुआ, न उनका बेटा की जगह एक भेड़ ख रखी दी, न उनका बेटा ख जीवनदान दे दियो। तब से यो त्यौहार सब मनावने लगी गया। किसान भाइयों, इस्लामी कैलेंडर का अनुसार धुल हिज्जा का महीना में मनाई जाने वाली इन ईद को एक बड़ो सामाजिक संदेश यो भी छे कि समाज में सभी वर्ग का लोग न का बीच प्रेम, समरसता न अरु समानता बनी रहे। न एकाज लेना इना त्यौहार का अवसर पर मुस्लिम समाज का भाई बहन ईदगाह या मस्जिद न विशेष नमाज पढ़ज न अरु एक दूसरा से गला मिली न मुबारकबाद देज। तो भाई बहन, हमारी तरफ से भी आप सबका ईद की शुभकामना न। न किसान भाई बहनों, एक साथ आज 28 मई का एक आरु खास दिवस मनाए जाए जेको नाम छे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, जेख महिला ना का स्वास्थ्य का लेना अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का रूप में भी जाने जाए। भाई बहनों, यो दिन महिला ना का समर्पित एक दिन छे जेको उद्देश्य उनका स्वास्थ्य का अधिकार ना का बारा में जागरूकता फैलावनु। न हर साल 28 मई ख पूरा विश्व की महिला न अरु स्वास्थ्य संगठन इना विशेष दिन ख मनावज न इना दिवस की स्थापना 1987 में हुई थी। न एका बाद 19 साल दक्षिणी सरकार न एक मान्यता दी थी। किसान बहनों, इना दिन का शुभारंभ का साथ महिला नम प्रजनन अरु यौन स्वास्थ्य का महत्व का साथ साथ उनका अधिकार न का बारा में शिक्षा अरु जागरूकता बढ़ावना का अवसर अंततः स्वीकार कराया गया। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस पर महिला नख मुख्य रूप से उनका यौन और प्रजनन संबंधी न स्वास्थ्य अधिकार न का अंतर्गत स्वास्थ्य स्वतंत्रता न अरु सुरक्षा से जुड़िया कई विशिष्ट अधिकार दिया गया है, जिनमें छे प्रजनन को अधिकार, स्वास्थ्य को अधिकार, मातृत्व सुरक्षा को अधिकार, हिंसा से मुक्ति को अधिकार, निर्णय लेना की स्वायत्तता। एक मतलब छे महिला नख अपना शरीर, यौन जीवन न अरु प्रजनन विकल्प न का बारा में खुद निर्णय लेना का अधिकार छे। तो किसान भाइयों, इना अधिकार न का तहत भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 अरु घरेलू हिंसा से महिला न की सुरक्षा अधिनियम 2005 जैसा प्रमुख कानून महिला न का शारीरिक न मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करज। न आज भी किसान भाइयों, धर्म या उम्र की परवाह किए बिना यौन अरु प्रजनन स्वास्थ्य न अरु उनका अधिकार जैसा विषय न पर विश्व भर कि महिला नख शिक्षित करने की आज भी अत्यंत आवश्यकता छे। न भाविनोण, ये सर्वोपरि भी छे। तो किसान भाविनोण, यो थी अपनी थोड़ी सी बातचीत ईद उल जुहा न अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस पर। हम बात तो आगे भी करेंगे, ओका से पहले आओ सुना यो निमाड़ी लोकगीत जेखा गाय हेमलता उपाध्याय न साथी नना।

0: सदैवन अभी हम हेमलता उपाध्याय ने साथी नसियो निमाड़ी लोकगीत सुनी रहा था।
1: से लगभग 15 किलोमीटर

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान भाई,
7: किसान भाई धवन इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई धवन, अब आओ जाने लेवांज की रोज की तरह हम अपना कार्यक्रम आपसी सामान्य ज्ञान पर आधारित खेती किसानी से जुड़े कौन सो प्रश्न पूछने वाला छे, तो बिल्कुल हम आपका बता देवांज कि अपनो आज को प्रश्न छे, भूमि की उर्वरता का जैविक तरीका से बढ़ाना का मुख्य कारक कौन सा छे। प्रश्न एक बार फिर सुनो, भूमि की उर्वरता का जैविक तरीका से बढ़ाना का मुख्य कारक कौन सा छे। तो यो छे हमारो आज को प्रश्न, आप सब किसान भाई बहनों से नई ना प्रश्न को उत्तर सुन जो हमारा से कार्यक्रम का आखिरी में, तब तक इन प्रश्न को उत्तर सोचो न अपना कार्यक्रम को आनंद लो। न किसान भाई बहनों, आओ अब थोड़ी सी बातचीत आरु करी लेवाज। किसान भाई बहनों, नौतपा 25 मई से शुरू हो चुके, न आज ओको चौथो दिन छे। नौतपा का 9 दिन नम उसी तो बहुत गर्मी पड़ज जी की सब जीव जंतु न का लेना असहनीय रज, पर ई नौतपा का 9 दिन किसान भाई न उनकी खेती का लेना वरदान साबित होज। कुछ भाई बहन आशा कज कि मई जून की तपती दोपहरी, गर्म हवा, नारु तेज धूप लोग नखा परेशान करी देज, पर आपका यो भी मालूम होएगा कि योज भीषण गर्मी धरती अरु पर्यावरण का लेना बहुत जरूरी मानी जाए, क्योंकि नौतपा का 9 दिन नम पड़ने वाले तेज गर्मी न सिर्फ तापमान बढ़ावज बल्कि प्रकृति का संतुलित रखना में भी अहम भूमिका निभावज। इन साल नौतपा 25 मई से शुरू

0: 2 जून तक रहेगा। इना दिन नमा कई इलाका नमा तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस भी रह सकज। किसान भवन गांव नमा अक्सर बुजुर्ग कहता था कि अगर न तपो नी तपियो तो रोग न कीड़ा बढ़ागा। न अब वैज्ञानिक भी मानज कि इनी कहावत का पीछा गहरो पर्यावरणीय कारण छिपेल छे। जसो कि नौतपा का दौरान पड़ने वाली तेज धूप न अरु गर्म हवा न कई हानिकारक कीट न अरु सूक्ष्म जीव न का जीवन चक्र का तोड़ी देज। अगर मौसम में लगातार नमी बनी रहे न अरु पर्याप्त गर्मी नहीं पड़ तो मच्छर फफूंद न अरु फसल न का नुकसान पहुंचाने वाला कई कीट तेजी से बढ़ने लगी जाए। नौतपा की गर्मी छोटा गड्ढा न अरु उनमें जमा पानी ख सुखाड़ी देज, जेका से मच्छर न का लार्वा खत्म हो जाए, जेका से डेंगू मलेरिया न अरु चिकनगुनिया जैसी बीमारी न को खतरों भी कम हो जाए। साथ ही भाई बहनों नौतपा फसल न ख मृदा जनित बीमारी नसी बचावना में भी मदद करज। एक अलग खेती किसानी का लिहाज से भी नौतपा बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाए। तेज तापमान खेत न मौजूद कई हानिकारक कीट नख खत्म करना में मदद करज। इनमें सफेद मक्खी माहू दीमक न अरु पत्ती नख खाना वाला कीट शामिल छे। अगर गर्मी कम पड़ तो यो कीट ज्यादा समय तक जीवित रहज न फसल न तेजी से फैलज, जेका से किसान भाइयों को फसल उत्पादन प्रभावित होज और मतलब उत्पादन भी कम होने की संभावना रहे। किसान भाइयों लगातार नमी न अरु हल्को तापमान फफूंद अरु बैक्टीरिया नका लेना अनुकूल माहौल तैयार करज, जेका से पौधा न फंगल रोग बढ़ी सकज न अनाज आरु भी न सब्जी नम भी सड़न की समस्या लगी सकज। तो नौतपा की तेज धूप न गर्मी इन हानिकारक जीव नख कमजोर करना को काम करज। न योज वजह छे जेका कारण जेका धरती को सैनिटाइजेशन या कीटाणुनाशक भी कहे जाए। एक साथ नौतपा मौसम से भी जुड़ेल छे, जसो कि नौतपा की गर्मी मानसून का भी प्रभावित करना में अहम भूमिका निभावज। जब धरती ज्यादा गर्म हो तो कम दबाव को क्षेत्र बनज, न योज कम दबाव समुद्र से मानसूनी हवा नख हमारा देश की तरफ खींचज। न अगर नौतपा कमजोर पड़ जाए तो मानसून देर से भी आई सकज या बारिश को संतुलन भी बिगड़ी सकज, यानी यो गर्मी आवना वाली बारिश की तैयारी का भी मतलब तैयारी भी करज। पिछला कुछ साल न नौतपा का दौरान कई जगह न पर असामान्य बारिश देखने का मिलीज। एक अलग मौसम वैज्ञानिक न को मानना छे कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम को पैटर्न या तरीको बदली रहे। न अगर भविष्य में नौतपा कमजोर होते गयो तो एको असर खेती पर्यावरण न अरु लोग न का स्वास्थ्य पर भी पड़ी सकज। एक अलग मौसम विशेषज्ञ मानज कि यो नौतपा की भीषण गर्मी भले ही लोग न का परेशान कर पर प्रकृति का संतुलन का लेना यो बहुत जरूरी है। न भाई बहनों हम न हर मौसम को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि तीन प्रकार का जो मौसम रहे उमें थोड़ी बहुत हमका तकलीफ तो हो लेकिन उनका लाभ भी छे, उनको महत्व भी छे। तो हर मौसम का हिसाब से अपनों न अपना पशु न को उनका उनको बचाव करना चाहिए, अपने स्वयं को बचाव करना चाहिए, न साधन अपने न हमारा खेती किसानी का काम भी करता रहना चाहिए। तो भाई बहनों यो थी अपनी थोड़ी सी बातचीत नौतपा पर, और आओ अब सुनांज स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित एक महत्वपूर्ण भेंटवार्ता। विषय छे समग्र खेती अंतर्गत मछली पालन आज की आवश्यकता। इन विषय पर जानकारी दे रहा है ग्राम दीपला का जैविक प्रगतिशील कृषक भाई अश्विनी कुमार बख्शी न आपसी बातचीत करीज जगदीप सिंह फरे ने। तो आओ सुना यो भेंट वार्ता।
1: स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम दीपला में एक जैविक प्रगतिशील कृषक के साथ हैं, जो कि हमको पहले भी कई महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे चुके हैं और आज भी हमको एक महत्वपूर्ण विषय मछली पालन पर जानकारी देंगे। तो भाई अश्विनी कुमार बख्शी जी, आपका किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
2: राम राम किसान भाइयों।
1: बख्शी जी, जैसे कि आज हम मछली पालन पर बात कर रहे हैं जो कि समग्र खेती के अंतर्गत आता है, तो आपको मछली पालन की आवश्यकता कैसे महसूस?
2: देखिए ऐसा है, मैं काफी समय से जब खेती कर रहा था
1: हाँ?
2: तो मैंने ये देखा कि पारंपरिक खेती में अब अनिश्चितता बहुत रही हो गई है
1: हाँ?
2: आप कितनी भी कोशिश करो या तो बाजार भाव नहीं मिलता है
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल,
2: या मौसम की तकलीफ आ जाती है, कभी कुछ तकलीफ आती है। तो फिर मैंने मल्टीपल इनकम की तरफ गया, तो मुझे समग्र खेती के बारे में जब मालूम पड़ा था तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना समग्र खेती को देखा जाए। तो सबसे पहले मैंने बागवानी खेती भी चालू करी
1: हाँ।
2: उसके बाद फिर मैंने बकरी पालन किया,
1: अच्छा,
2: थोड़ी बकरियां रखी ताकि उससे भी कुछ आय आए। मुर्गी पालन किया, उससे भी थोड़ी आय बनी
1: हाँ।
2: फिर मैंने देखा कि जब मेरे

0: पास खेत में पानी की व्यवस्था है
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना मछली पालन किया जाए।
1: अच्छा।
0: फिर मैंने आसपास के क्षेत्रों में मछली पालन लोगों को देखा, उनको क्या समस्या आ रही, क्या है तकलीफ है,
1: अच्छा।
0: क्या फायदा है, तो उसके आधार पे मैंने छोटा सा प्रयास किया। मेरे एक छोटा तालाब खोदा, मुझे उसमें समझ में आया कि, तो फिर मैंने अब 1 हेक्टेयर का तालाब और खोद रहा हूँ मैं,
1: अच्छा
0: ताकि मल्टीपल इनकम आना चाहिए सब दूर से,
1: अच्छा
0: क्योंकि
1: अच्छा
0: वही मछली पालन में वही पानी खेत में भी उपयोग होगा, और जो मछलियाँ खाद देती है
1: अच्छा
0: वो खाद भी थोड़ा सा खेत में, जैविक खेती करता हूँ
1: हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ
0: मैं,
1: हाँ
0: तो वो मुझे उसका फायदा मिलेगा।
1: मतलब मछली पालन के फायदे भी यही हैं।
0: हाँ, बहुत फायदे हैं मछली पालन के।
1: और क्या फायदे हम ले सकते हैं हमारे किसान भाई अगर ये मछली पालन करें
0: देखो, एक
1: तो?
0: तो पानी की अनिश्चितता खत्म हो जाती है। मान
1: अच्छा
0: लो कोई कारण से बोर बैठ गया, कुछ हो गया,
1: हाँ
0: तो मैं ड्रिप के माध्यम से मेरी फसल को संभाल सकता हूँ,
1: अच्छा,
0: वही पानी मेरे पास रहता है
1: मतलब
0: हमेशा,
1: वो दो काम में आ जाएगा, मछली भी उसे पल जाएगी और वो पानी सिंचाई में भी काम आ
0: सिंचाई
1: जाएगा।
0: में भी काम आ जाए।
1: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि इसके पानी के डबल फायदे हो जाएंगे। अच्छा, मछली पालन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं?
0: देखिए, मछली पालन तो एक पद्धति तो यह है कि आप अपने खेत में तालाब खोदो,
1: बिल्कुल।
0: उसमें पॉन्ड लाइनर डालो और
1: अच्छा
0: मच्छी पालो।
1: अच्छा
0: दूसरा एक होता है कि आप बरसात का पानी जिधर से आपके खेत में आता है
1: अच्छा
0: उधर का क्षेत्र को ओपन करके थोड़ा गहरीकरण, उसमें पॉन्ड लाइनर नहीं डलता है,
1: अच्छा
0: उसके अंदर मछली पाल सकते हैं। पर वो
1: अच्छा
0: पानी, उसके अंदर भी काली मिट्टी वगैरह बिछाओ और अच्छे से पूरी व्यवस्था रखो तो उसमें भी पानी टिकता है।
1: अच्छा
0: तीसरा होता है, आजकल एक बायोफ्लॉक्स चला है जिसमें आप मशीन यानी वो टैंक देते हैं, उस टैंक में मच्छी पाली जाती है,
1: अच्छा
0: ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था कर लो,
1: हाँ
0: तो वो सब कंपनियां बताती है, उसमें भी अच्छा फायदा है। मच्छी पालन काफी फायदेमंद चीज है, उसमें भी
1: अच्छा, मतलब दो तीन प्रकार से हम
0: तो
1: मछली पालन
0: मछली
1: कर
0: पालन
1: सकते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: ये आपने जैसे पहले प्रकार में पॉन्ड लेन बोला,
0: पाउंड
1: वो
0: लाइनर,
1: क्या होता है पॉन्ड लाइनर?
0: पाउंड लाइनर एक 500 GSM का प्लास्टिक आता है
1: अच्छा
0: जिससे पानी जो आप तालाब में भर रहे हो आपके,
1: अच्छा
0: वो जमीन के अंदर सीपेज नहीं होता उससे।
1: अच्छा मतलब पानी नीचे नहीं
0: हाँ,
1: जाता।
0: प्लास्टिक बिछाते हैं उसमें,
1: हाँ हाँ
0: वो काफी फायदेमंद है,
1: नहीं तो तुम जितना पानी भरोगे उस पर जमीन में चला जाएगा।
0: चला जाएगा। वो पॉइंट लाइनर से बचत होती है
1: हाँ, पानी की
0: कि,
1: बचत होती है।
0: हाँ, काफी बचत होती है।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि मछली पालन में क्या क्या मुश्किलें आ सकती है एक किसान को?
0: देखिए, मच्छी पालन में अगर आप किसी विशेषज्ञ की सलाह से करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है।
1: अच्छा
0: और मैं सभी किसान भाइयों को ये कहूंगा कि मच्छी पालन जब भी करें
1: हाँ
0: तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही करें।
1: अच्छा
0: मछली पालन विभाग में काफी विशेषज्ञ है
1: हाँ
0: जो आपको समय समय से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, और आप तो क्या है कि ओपन बाजार में भी काफी लोग मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ गए हैं, आप उनसे भी संपर्क करके
1: अच्छा
0: अच्छा मच्छी पालन कर सकते हो।
1: अच्छा बख्शी जी, अगर कोई किसान पहली बार मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहे तो एक किसान को, मतलब एक छोटा किसान, तो उसको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी?
0: देखिए, मच्छी पालन में तो सबसे पहले तो आप पूंजी की व्यवस्था मैं उसको ज्यादा
1: अच्छा
0: महत्वपूर्ण समझता
1: हाँ
0: हूँ,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि किसान वैसे ही परेशान है।
1: मैंने एक छोटा किसान इसलिए कहा कि
0: हाँ,
1: भाई उसको
0: छोटा
1: पूंजी
0: किसान को
1: जुटानी
0: सबसे पहले
1: पड़ेगी।
0: पूंजी,
1: हाँ
0: मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास 1 लाख की पूंजी है
1: हाँ
0: तो आप 50,000 रुपये खर्च करके, जो भी आप जिससे भी तालाब खुदवाएंगे ना, उससे आप बात करेंगे कि इसमें कितने रंग मच्छी पलेगी,
1: हाँ
0: उतने उसके हिसाब से आप ऐसा ऐसा काम करो कि अगर आपके पास जितनी पूंजी हो
1: अच्छा
0: उससे आधी पूंजी में काम करो,
1: अच्छा
0: ताकि आपको भविष्य, क्योंकि क्या है कि मछली पालन में भोजन एक बहुत बड़ी बात है।
1: अच्छा
0: माने मेरा ये, मैंने जो महसूस किया कि मछली पालन में जो भी लोग गए फेल हुए, वो 2 कारण से फेल हुए, तो या तो पानी की समस्या, बीच में बोर बैठ गया
1: हाँ
0: या कुछ, या फिर भोजन की व्यवस्था,
1: हाँ
0: वो मछलियों को समय से भोजन नहीं दे पाए।
1: मुख्य रूप से भोजन और पानी ही है,
0: पानी है,
1: और सबसे पहले तो पानी चाहिए।
0: पानी और भोजन दोनों,
1: हाँ
0: पानी भी है और भोजन नहीं है तो मछली जितना आपने खिलाया उतना वजन कम हो जाता है, मैंने ये
1: बिल्कुल
0: देखा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसको तो सतत भोजन होना है, ताकि आप वो जो उसकी समयावधि 6 महीने है जैसे, तो 6 महीने के अंदर वो मच्छी ने बाजार में चली जाना चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: तो आपको
1: और
0: फायदा होगा।
1: मेरे हिसाब से तो सबसे पहले पर्याप्त पानी होना चाहिए कि 12 महीने, मतलब गर्मी में भी पानी खत्म नहीं
0: हाँ,
1: होना
0: बिल्कुल नहीं
1: चाहिए,
0: होना
1: है
0: चाहिए,
1: या ट्यूबवेल है या नदी से है, कहीं से भी
0: जो भी
1: है।
0: है अच्छी उचित व्यवस्था
1: हाँ, तो
0: करके ही
1: 12 महीने
0: करें,
1: पानी।
0: जुआ नहीं खेलना चाहिए मेरे को।
1: हाँ अच्छा बख्शी जी, एक दिमाग में बात आ रही है कि सबसे पहले जो किसान ये मछली पालन करना चाहेगा तो उसको मछली के बीज कहाँ से मिलेंगे?
0: देखिए, वो तो आप मच्छी पालन विभाग में जाओगे ना तो वो आपको
1: हाँ
0: पूरा गाइड करेंगे,
1: अच्छा
0: और बाजार में मैंने बताया ना, ओपन बाजार में भी आप काफी लोग मछली के व्यवसाय में उतर गए हैं,
1: हाँ हाँ
0: आप उनसे भी संपर्क करोगे,
1: अच्छा
0: उसमें क्या है कि वो आपको सब चीज की गाइड करेंगे,
1: अच्छा
0: बीज भी, फिर
1: हाँ
0: वो मछली आपको कितने प्रकार की होती है, कौन सी मछली पालना चाहिए, कौन सी नहीं। पालना।

0: अच्छा
1: वो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
0: अच्छा अच्छा अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भविष्य में इसका स्कोप क्या है।
1: देखिए मछली तो ऐसा है, आज की तारीख में कुपोषण जो फैल रहा है
0: हाँ
1: उसमें मछली का उपयोग जो मांसाहारी लोग है
0: हाँ
1: वो लोग को मैंने प्रोटीन के हिसाब से, और जो भी मछली का मेरे को तो उतना वो नहीं है,
0: अनुभव।
1: पर हाँ ये है कि मैंने जो बाजार में देखा तो मछली
0: हाँ
1: की डिमांड काफी है।
0: अच्छा
1: अभी मैंने जो महसूस किया, मैं इंदौर गया था तो मैंने ये देखा कि अगर 100 रुपए की डिमांड है तो बाजार में ताजी मच्छी जिसको बोलते हैं
0: हाँ
1: मीठे पानी की,
0: हाँ हाँ
1: उसकी पूर्ति अभी 30 रुपए की भी नहीं है,
0: क्या बात है।
1: काफी डिमांड है।
0: मतलब प्रोटीन का मुख्य।
1: हाँ अभी, और वो प्रोटीन में है और मछली के अंदर जैसे वो आंखों के लिए भी बताते हैं कि
0: हाँ
1: बहुत अच्छी है, याददाश्त के हिसाब से भी अच्छी,
0: अच्छा
1: काफी लोगों ने मछली के जो शौकीन लोग हैं
0: अच्छा
1: आज वो मैंने देखा, अगर आप उनको ताजी और अच्छी मच्छी स्वस्थ मच्छी दो तो वो लोग बाजार में आपको उचित मूल्य देते हैं।
0: सही बात कही आपने। अच्छा इसके पालन में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए।
1: देखिए पालन में सावधानी, मैंने ये देखा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए
0: हाँ
1: टैंक के अंदर, समय समय से आप जो भी आप मार्गदर्शन आपको मिलेगा उसके हिसाब से कार्य करते रहो, उसमें लापरवाही नहीं बरत सकते।
0: अच्छा
1: कि जैसे अभी मान लो अपने को लगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मच्छी ऊपर आ रही है
0: हाँ
1: या कुछ हो रहा है, तो उसका तत्काल निदान का बहुत जरूरी है।
0: ऐसा
1: आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब मैं जाऊंगा लाऊंगा, आप पहले से मछली पालन में वो बता देगा आपको
0: हाँ
1: जो भी रहते जिसके आप निर्देशन में करेंगे, तो कि भैया ये परेशानी आती है वो लाके मैं पहले से रखो आप,
0: अच्छा
1: ताकि जैसे ही आपको लक्षण दिखे तो इमीडिएट अप्लाई करना चाहिए आपको वो दवाई।
0: तो क्या कारण हो सकते हैं
1: जैसे
0: मछली के।
1: ऑक्सीजन की कमी होती है,
0: अच्छा
1: फंगस रहता है,
0: हाँ
1: मल्टीपल कारण होते हैं, जैसा मनुष्य का शरीर है वैसा
0: हाँ
1: उसका भी
0: हाँ
1: स्वास्थ्य होता है,
0: हाँ
1: अगर उचित अच्छा वातावरण मिलेगा उसको भी तो वो स्वस्थ रहती है और उचित विकास करेगी। ठीक
0: अच्छा
1: है, आपने को तो किसान को तो जब भी फायदा है ना, जब मच्छी स्वस्थ रहेगी तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी भी।
0: जैसे अपने खेत में फसल अगर अच्छी है उसमें कीड़ा नहीं लगा है तो उसी प्रकार इसमें बीमारियां भी आती है क्या।
1: आती है ना बीमारी आती है, पर वो पहले से आपको लक्षण दिख जाते हैं उसके।
0: अच्छा तो उसके इलाज के लिए कोई हमको
1: मैंने
0: कुछ
1: बोला ना आपको,
0: जी।
1: विशेषज्ञ के
0: हाँ
1: मार्गदर्शन में करोगे ना
0: अच्छा
1: तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
0: अच्छा ये आप जानना चाहेंगे कि आपने एक तालाब उनके लिए बना लिया है
1: हाँ
0: तो उसका जो पानी होता है वो कितने दिन में बदलना चाहिए।
1: देखिए वो तो मैंने बोला ना, आपके ने व्यवस्था क्या है,
0: अच्छा
1: जैसे अभी मैंने ये देखा कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है अगर पानी की,
0: हाँ
1: तो तालाब का पानी बदलने से पहले कई आजकल मिलते हैं बाजार में दवाइयाँ, वो डाल के आप उसको शुद्ध कर सकते हो।
0: अच्छा
1: मछली जैसे वो करती है, वेस्ट निकालती है अपना, जितना
0: हाँ
1: भोजन दे रहे हो
0: बिल्कुल
1: उसका 60% वो वेस्ट
0: बिल्कुल
1: ताल निकालती है तालाब में,
0: हाँ
1: तो वो
0: हाँ
1: नीचे इकट्ठे होता।
0: हाँ
1: आजकल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आते हैं,
0: अच्छा
1: अगर आप उनका उपयोग करोगे तो वो उसको भी, वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उनके जो वेस्टेज होती है
0: हाँ हाँ
1: उसको भी भोजन में प्रोटीन में परिवर्तित कर देती
0: अच्छा
1: है।
0: तो वो मतलब उसी से पानी दूषित होता
1: हाँ
0: है।
1: दूषित होता है,
0: हाँ
1: और स्वाभाविक बात है अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ती, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है अंदर, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो जो बैक्टीरिया का आप तो समय से उपयोग करोगे तो
0: हाँ
1: वो उसको प्रोटीन में बदल देगा कार्बन डाइऑक्साइड को।
0: बिल्कुल
1: अगर आप, मैंने आपको एक ही चीज बताई, आप मत्स्य पालन विभाग और जो विशेषज्ञ है बाजार में ओपन मार्केट में काफी लोग,
0: हाँ
1: इनके मार्गदर्शन में करोगे
0: हाँ
1: तो मैं नहीं
0: तो
1: समझता कोई बहुत बड़ी
0: वो
1: तकलीफें
0: सारी
1: आए।
0: जानकारी दे देंगे आपको
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि क्या क्या सावधानियां
1: हाँ
0: रखना चाहिए और इसके अलावा भी। अच्छा वो खाने के लिए हम एक बात करना चाहते हैं कि खाना उनको किस टाइप से और कितने कितने समय के अंतर से देना
1: देखिए
0: चाहिए।
1: आजकल तो बाजार में सब रेडीमेड फूड मिलता है इनका,
0: अच्छा
1: मछलियों का।
0: हाँ
1: मैंने वही बोला कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 50,000 से शुरू करो। मछली पालन में मछली का भोजन की कमी नहीं आना चाहिए। 6 माह के अंदर अपने को एक टारगेट होना चाहिए कि जैसे अभी मैं फंगस मच्छी है, तो मैंने ये महसूस किया मेरे यहाँ कि जब जब भोजन बंद किया तो मच्छी का वो ग्रोथ रुक जाती है और उल्टा वो वजन कम कर लेती है।
0: नहीं मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि वो जो भोजन कंप्लीट रहता है
1: हाँ
0: तो कितने कितने दिन के अंतर से लेना
1: दिन में दो
0: चाहिए
1: बार दिया जाता है, एक
0: सुबह
1: सुबह
0: शाम।
1: एक शाम। हाँ
0: हाँ बस वही जानना चाह रहा
1: उसके
0: था मैं।
1: वजन का
0: अच्छा
1: 3% भोजन दिया जाता है।
0: ऐसा तो मछली पालन के लिए मुख्य रूप से किन किन प्रजातियों के मछलियों को
1: देखिए
0: पालना चाहिए।
1: वो मेरे को इतनी इसमें विस्तृत तो नहीं, मैं तो फंगास मच्छी के बारे में
0: जो आपने
1: मुझे
0: पालन
1: गाइड
0: किया
1: किया
0: है तो
1: उनने,
0: आपने कौन कौन से मछलियों को
1: फंगास
0: पालन।
1: मच्छी है,
0: अच्छा
1: सीलन बोलते हैं उसको
0: हाँ हाँ
1: लोकल भाषा में,
0: तो एक ही
1: वो
0: प्रजाति आपने पाली
1: अभी
0: अभी
1: एक
0: तक।
1: ही प्रजाति पाली।
0: अच्छा
1: वो क्या है कि कम क्षेत्र में पल भी जाती है और वजन भी अच्छा करती है, किसान को तो वजन से मतलब है। बाजार में आप कुछ महंगी मच्छियां होती है तो उनके साथ उतनी परेशानी भी रहती है, उतनी खटपट ज्यादा होती है उनकी।
0: अच्छा कुछ विशेषज्ञ पास जाओगे तो सब बता देंगे कौन कौन सी
1: देखिए
0: प्रजातियां
1: आप, वो
0: आपको
1: तो सीधा
0: पालनी है।
1: बात है, कोई जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ मच्छी 1,000 भी पल जाती है
0: अच्छा
1: और कुछ मच्छियां 500 भी पलती है,
0: हाँ
1: तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्षेत्रफल कितना है।
0: अच्छा

0: और वो आपको जब आप शुरू करेंगे ना तो आपको उसके लिए बारे में गाइडेंस प्रॉपर मिलता
1: मिलता
0: रहेगा।
1: रहे, बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, इसको बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है?
0: देखिए अभी तक तो मेरा अनुभव ये है कि इसका खरीदार आपके पास घर चल कर आता है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि इनके जो है, क्योंकि ये मच्छी जिंदा जाती है,
1: हाँ,
0: तो खरीदार आपके आता है वो गाड़ी के अंदर पूरा पानी वगैरह भर के लाते
1: मतलब
0: हैं।
1: उसको बहुत ही सावधानी से पकड़ के ले जाना
0: वो
1: पड़ता है।
0: लोग तो नहीं, अपने किसान को तो तालाब, वो तालाब पे गाड़ी लेकर आते हैं,
1: अच्छा,
0: उनके ही आदमी पकड़ते भी है, वही आपके सामने काटा करते हैं, वजन करते हैं और उनके टैंक में डालते जाते हैं।
1: अच्छा, आपने सिलेन मछली पाली है तो ये कितने दिन में बेचने लायक हो
0: ये
1: जाती
0: छह
1: है?
0: माह में तैयार हो जाती है।
1: अच्छा, 6 माह में
0: अगर आप
1: तैयार हो
0: प्रॉपर
1: जाती है।
0: भोजन दोगे
1: हाँ, तो
0: तो 6 माह के अंदर ही विक्रय के लिए उपलब्ध हो जाती
1: कितना
0: है।
1: वजन हो जाता है 6 माह
0: ये
1: में
0: करीब
1: एक को?
0: करीब 1 किलो से 1.5 किलो के बीच वजन हो
1: ऐसा,
0: जाता
1: बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, इसको बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अच्छा, जैसे
0: है।
1: अपन ने
0: बताया
1: अभी,
0: वही बेचने
1: हाँ
0: के लिए बता ही दिया आपको मैंने
1: जी
0: कि
1: जी जी
0: व्यापारी आता ही है घर चल के।
1: जी जी
0: नहीं तो
1: जी
0: इंदौर वगैरह में इसका अच्छा मार्केट है। अगर आप
1: अच्छा।
0: किसान चाहे कि मैं खुद की गाड़ी में ले जाऊँ तो पानी भर के, आजकल तो सब ऑक्सीजन की गोलियां मिलती है, डालते जाओ वो छोटे से, आप जिंदा भी ले जा सकते हो।
1: अच्छा, एक किसान को मछली पालन पर प्रति एकड़ क्या लागत लग सकती?
0: देखो प्रति एकड़ जो मेरे को समय आया 6 से 7 लाख रुपए
1: हाँ,
0: की लागत आती है,
1: अच्छा।
0: जो मैंने अभी करवा रहा हूँ 6 से 7 लाख रुपए के एकड़ की लागत है।
1: अच्छा, और इससे कम में भी हम कर सकते हैं?
0: कर सकते हैं ना, वो मैंने बोला ना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी पूंजी है।
1: हाँ, उस हिसाब से अपन
0: हाँ,
1: वो तालाब का
0: जितनी
1: निर्माण
0: बड़ी
1: करवा
0: चादर
1: सकते
0: हो
1: हैं।
0: उतने फेर पसारो।
1: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। किसान भाई, आपसे हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे प्रति एकड़ में, जैसा आपने कहा कि 6 से 7 लाख रुपए लगेंगे, तो उसको फिर कितना, 6-7 लाख रुपए लगाने पे कितना लाभ मिल सकता
0: देखिए
1: है?
0: इसमें ऐसा है कि पहली बार एक फिक्स इन्वेस्टमेंट और जो तालाब खुदाई लगेगी
1: हाँ
0: वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, वो एक ही बार होगा।
1: बिल्कुल,
0: पॉन्ड लाइनर डलेगा
1: हाँ
0: वो भी एक ही बार का इन्वेस्टमेंट है, वो 5 साल तक आपको वो पॉन्ड लाइनर
1: जब,
0: सर्विस देता है। आजकल
1: हाँ
0: कंपनियां गारंटी लेती है।
1: अच्छा,
0: एक तो वो आपका हो गया
1: हाँ
0: फिक्स इनकम हो गया
1: बिल्कुल।
0: जो एक ही बार लगेगा आपको। जैसे पहली बार आपको मच्छी का बीज डाला,
1: हाँ
0: मच्छी के बीज डालने के बाद उसका भोजन, हाँ ये है कि आप जितना भोजन देते हो उसका डबल पैसा मिलता है,
1: मिल जाए, डबल प्रॉफिट मिलता है,
0: लगभग लगभग मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात बताई
0: हाँ,
1: आपने।
0: आप डबल नहीं भी बोलो तो 80% तो गारंटेड मिलता ही है।
1: मिलता ही 80% लाभ मिल ही
0: हाँ, मिल
1: जाता
0: ही
1: है,
0: जाता है।
1: बहुत ही अच्छी बात है। जैसे अगर 6 लाख रुपए आप लगा
0: नहीं
1: रहे
0: 6 लाख रुपए लगाए आपने तो
1: हाँ
0: उसमें 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये तो समझ लो आपके खुदाई और लाइनर में चले गए।
1: हाँ
0: 2-2.5 लाख रुपये आपने पूंजी लगाई है तो 1-1.25 लाख रुपये का फायदा आपको होता
1: वो
0: है
1: अगली बार जब बीज डालोगे
0: हर
1: तो
0: छह
1: ये चीज
0: महीने
1: भी
0: में।
1: नहीं लगेगी
0: हाँ
1: आपको, डबल
0: स्वाभाविक
1: सी
0: बात है,
1: चीजें।
0: वो तो फिर अगली
1: हाँ
0: बार आपको भोजन के और दवाइयों का
1: हाँ
0: लगेगा।
1: तो अगली बार अच्छा प्रॉफिट मिलेगा।
0: हाँ, मिलता है प्रॉफिट, अच्छा है किसान को। अच्छा, अगर किसान के पास पानी की व्यवस्था है और वो अगर प्रॉपर ध्यान देगा,
1: हाँ
0: जैसे उनका समय से 2 टाइम जो भोजन डलना है वो एक समय पे प्रॉपर डल रहा है, दवाई
1: हाँ
0: वगैरह ये वो सब प्रॉपर ध्यान देता है, ऑक्सीजन का लेवल, तो प्रॉफिट तो है।
1: बिल्कुल। अंत में आप मछली पालन पे हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आप, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बहुत बड़े लेवल पर शुरू करो,
1: हाँ
0: पर हाँ एक ये है कि आप छोटे लेवल, आजकल सरकारी योजना का भी लाभ मिल रहा है, भले छोटी लेवल पर शुरू करो पर करो जरूर। मल्टीपल इनकम आना चाहिए,
1: हाँ
0: यानी
1: समग्र खेती करो।
0: समग्र खेती करो, उसमें आप एक चीज के भरोसे मत रहो। और बाजार तो ऐसा है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी दोगे, अच्छी स्वस्थ मच्छी दोगे, बढ़िया साइज की दोगे, जो बाजार में डिमांड है, किसान जाके पूछ भी सकता है बाजार में, क्योंकि किसान से बड़ा मैं तो नहीं समझता कि कोई जानकारी रखता हो।
1: बिल्कुल
0: किसान अगर अच्छे से रखे, उनके बाजार के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से अगर वो काम करेगा तो बाजार में भाव भी अच्छा मिलता
1: निश्चित
0: है,
1: रूप से लाभ
0: मिलता
1: होना ही
0: ही है,
1: है।
0: बिल्कुल मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता, मैंने मछली के अंदर देखा मेरे को भी कि मैंने 2 साल से देख रहा हूँ, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मच्छी के भाव डाउन हो। 6 माह के 6 माह आप ऐसे बीज डालो समय से कि आपका जब उत्पाद आए बाजार में तो जब
1: हाँ
0: भाव रहे।
1: बिल्कुल, इस प्रकार से समय देख के डालना चाहिए।
0: हाँ
1: तो भाई अश्विनी कुमार बख्शी जी, आपने मछली पालन विषय पर जो समग्र खेती के अंतर्गत आता है इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम भाई।
1: किसान भाइयों, अभी हम स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम दीपला का जैविक प्रगतिशील कृषक भाई अश्विनी कुमार बख्शी जी, समग्र खेती अंतर्गत मछली पालन आज की आवश्यकता विषय पर भेंटवार्ता सुनी रहा था। नापसी बातचीत करी जगदीप सिंह फरेना।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज

0: क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आओ अब एक विशेष सूचना सुनाज। खरीफ अभियान भारत सरकार की वार्षिक पूर्व मौसम पहल का अंतर्गत कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय बैठक 28-29 मई 2026

आंदोलन आओ अब एक विशेष सूचना सुनाज। खरीफ अभियान भारत सरकार की वार्षिक पूर्व मौसम पहल का अंतर्गत कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय बैठक 28-29 मई 2026 यानी आज न कल की भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में आयोजित करी जा रही है, जिको उद्देश्य मानसून की बुआई से पहले कृषि योजना बनावनु, फसल लक्ष्य न की समीक्षा करनु, जैविक कृषि, जैविक खाद, उर्वरक, कीटनाशक नख अपनावनु, न अरु किसान नख आधुनिक तकनीक, सरकारी योजना न अरु टिकाऊ कृषि पद्धति का बारे में जानकारी देनु, न उनका शिक्षित करनु छे। यो बैठक कृषि न कृषक नख आना वाला समय में लाभ पहुँचावना का लेना आयोजित करी जा रही। तो यो थी सूचना और आओ अब जान लेवाज आज का कृषि समाचार। तो आज का कृषि समाचार इना प्रकार से छे। किसान कल्याण न कृषि विकास विभाग को कृषि रथ कल यानी बुधवार का ग्राम भगवानपुरा पहुंचो, न पंचायत सभागृह में किसान नख विभाग की योजना न प्राकृतिक खेती नरवाई प्रबंधन न अरु पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी न दी। एमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आत्मा परियोजना से विकासखंड तकनीकी प्रबंधक उद्यानिकी विभाग से उद्यानिकी अधिकारी न पशुपालन विभाग ई सभी विभाग न का अधिकारी उपस्थित था। साथच कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा उर्वरक वितरण की ई टोकन न ई विकास प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई। नरवाई नी जलावणु न अरु ओका वैज्ञानिक प्रबंधन से होने वाला लाभ बताया गया। प्राकृतिक खेती न जीवामृत तैयार करी न खेत नमो ओका उपयोग की विधि न समझाई गई। न उद्यानिकी अधिकारी द्वारा उद्यानिकी विभाग की योजना न की जानकारी देते हुए किसान नख बागवानी फसल न लगावना का लेना प्रोत्साहित कराया गया। तो यह था अपना आज का समाचार। और भाई बहनों हमका आज कृषि उपज मंडी से कृषि उपज का भाव प्राप्त नहीं हुआ, तो अब मौसम की जानकारी सुनी ले आज। तो आज किसान भाई बहनों सूर्योदय सुबह 5:41 पर हुए, न सूर्यास्त शाम 7:07 हुए, न आज का दिन को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। तो यो थे मौसम की जानकारी। और भाई बहनों आओ अब सुनाज यो एक निमाड़ी लोकगीत जेखा गायोज गजानन ढाकसेना साथी नाना।

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान दर्शन यो था अपना आज को किसानवाड़ी कार्यक्रम आपको कैसा लगे पत्र का माध्यम से जरूर बताओ। जो नब बारी से कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा गया प्रश्न को उत्तर बताओ ना कि तो हमारा आज को प्रश्न तो भूमि की उर्वरता का जैविक तरीका से बढ़ाने वाला मुख्य कारक कौन कौन सा छे। तो एक उत्तर छे सूक्ष्म जीव जैसा कि जीवाणु नकावा केचुआ, जैविक खाद जैसा कि गोबर खाद हरी खाद पौधा न का अवशेष न अरु जल न खनिज तत्व भूमि की उर्वरता का जैविक तरीका से बढ़ावे। तो ये प्रश्न को उत्तर का साथ है अपना आज का किसान माड़ी कार्यक्रम को समय यहाँ पूरा हुए। तो आपका भाई जगदीश आज्ञा राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर।

0: सुनो कहानी।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है, अभी किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था, रात के 8 बजे है। आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
2: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक यादों की परछाइयां। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।

0: फिर डैडी से बात हुई?
1: डैडी घर पे नहीं थे, नीना ये बात पहले से ही जानती थी।
0: तो
1: बस नीना जो चाहती थी उसने पा लिया, हम लोग ऐसे ही मिलते रहे लेकिन डैडी से कभी भी मुलाकात ना हो सकी। फिर नीना ने शादी का जिक्र भी छोड़ दिया। मुझे भी लगा मैं अब उसके लिए कोई खास कशिश नहीं रह गया हूँ, बस जैसे मिले थे वैसे ही अचानक मिलना जुलना बंद हो गया। वैसे कविता का ख्याल है हम दोनों को करीब लाने के लिए नीना ने सेक्रीफाइस की है, लेकिन अपनी उतरन किसी को दे देना दान तो हो सकता है, सेक्रीफाइस नहीं।
0: तो तुम्हें इस आदमी के साथ नीना को देखकर हैरानी क्यों है?
1: इसलिए भाई कि दौलत की जिसको कमी ना हो, खूबसूरती से प्यार करने वाली औरत आखिर इस किस्म के आदमी से शादी करे तो क्यों?
0: क्या पता उसके लंबे चौड़े अरेंजमेंट में ये आदमी महज एक ढाल हो। और
1: वो लोग इधर ही आ रहे हैं।
2: कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? विकी नीना आई है।
1: हेलो नीना।
2: हेलो विकी, अच्छे तो हो?
1: फाइन थैंक यू।
2: इनसे मिलो, माय हस्बैंड मिस्टर लाल।
1: वेरी प्लीज टू मीट यू मिस्टर लाल। हाउ डू यू डू?
3: वेरी नाइस टू मीट यू मिस्टर लाल।
2: अच्छा भाई अब आप लोग बाहर चलिए, जायदा ने तो पूरा मुशायरा जमा रखा है।
4: हाँ, चलो ना कभी।
1: आइए मिस्टर लाल,
3: शेर सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी मिस्टर लाल।
1: चलिए आइए।
5: नीना
1: कैसी हो?
4: सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए तुमने मुझे रोका था।
1: यूं ही मैं जानना चाहता था शादी के बाद तुम कैसा महसूस कर रही हो।
4: शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है क्या?
1: लोग कहते हैं।
4: मुझे तो ऐसा नहीं लगा।
1: बहुत खुश हो?
4: बेहद। कौन किसी को क्या खुशी दे सकता है, खुशी तो अपने मन से होती है। वैसे मिस्टर लाल से मुझे सब कुछ मिल जाता है।
1: सब कुछ?
4: और अगर कहीं कमी रह जाती है तो आंखें बंद करके तुम्हें याद कर लेती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? छोड़ो, और सुनाओ कीवी से कैसी निभ रही है?
1: कुछ समझ में नहीं आता, कीवी दिन पर दिन शक की और बेहद डोमिनेटिंग होती जा रही है।
4: क्योंकि वो तुम्हें अपना, सिर्फ अपना समझती है।
1: अपना समझने से तो एतबार बढ़ना चाहिए।
4: कोई दूसरा उसकी खुशी में शरीक ना हो, डर भी तो लगा रहता है।
1: जाने क्यों मुझे लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए शायद नहीं बने।
4: तो क्या हुआ, शादी के बाद बन जाओगे?
1: और अगर ना बन सके तो?
4: तो आंखें बंद करके तुम उसके बारे में सोच लेना जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि वो बिल्कुल तुम्हारी अपनी।
1: दूसरे लफ्जों में जिंदगी भर हम एक दूसरे को धोखा देते।

0: दे रहे हैं।
1: मैं इसे अरेंजमेंट कहती हूँ। इस जमाने में जिंदा रहने के लिए एक सूझबूझ के अरेंजमेंट की जरूरत भावनाओं से ज्यादा है। जिस रफ्तार से हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, वहां रुककर पीछे देखने वाला इंसान कुचला जाएगा। गुजरा हुआ हर मोमेंट मर चुका है, खत्म हो चुका है। विकी, जहां खड़े हो उसी को स्टार्ट मानकर नई दौड़ शुरू करो।
0: शायद तुम ठीक कहती।
1: कम से कम मैंने यही किया है और मेरा ख्याल है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन।
0: लेकिन कीवी,
1: बिल्कुल परफेक्ट लड़की दुनिया में कोई है? कीवी में बहुत कुछ है। और फिर मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है।
0: मुझे उससे क्या लेना देना?
1: कीवी उनकी इकलौती बच्ची है।
0: लेकिन मुझे उसके रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं।
1: ना सही, वो तुमको बेहद चाहती भी तो है। तुम क्या उसे पसंद नहीं करते?
0: ना करता होता तो इतना सब ही क्यों?
1: सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा है तुम उससे भागना क्यों चाहते हो?
0: मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
1: क्योंकि तुम वक्त की रफ्तार के साथ नहीं हो। विकी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा।
2: लोगों की कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए तो जरा बाहर आ जाना, सारा प्रोग्राम फीका पड़ रहा है।
0: नहीं नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। आओ नीना, बाहर चले।
1: चलो। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी ही वकालत कर रही थी कीवी।
2: थैंक्स अ लॉट। लेकिन किसी को हमारी परवाह हो तभी तो।
0: कीवी, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
2: क्या समझूं, समझने को रखा ही क्या है। खुद ही ऐसी गलती कर रही हूँ, खुद ही इसे भुगतूंगी भी।
1: क्या बात है कीवी?
2: कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
0: कीवी, कीवी आखिर हुआ क्या है? तुम ये तो बताओ, तुम चाहती क्या हो?
1: बताओ ना कीवी, आखिर क्या चाहती हो?
2: तुमसे क्या छुपा है? अब तो सारा जमाना जान चुका है कि मैं क्या चाहती हूँ, किसे चाहती हूँ। लेकिन लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये
0: वो तुम्हें तो वहम हो गया है कीवी।
2: हाँ हाँ, मुझे ही वहम हो गया है। और तुम क्यों नहीं डैडी से बात करते हो? मम्मी बार बार मुझसे पूछती है, विकी ने प्रपोज किया, विकी कब प्रपोज करेगा, विकी के सहारे कब तक बैठी रहोगी। फ्रेंड्स मिलती हैं तो किसी भी रिंग को देखकर टोंट करती है, कीवी ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है। तब मेरा जी चाहता है मैं कहीं कूद पर जान दे दूं।
0: ओ कीवी, सुनो कीवी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी जल्दी है। मैं खुद बात करना चाहता था, लेकिन लेकिन मैं किसी अच्छे से मौके की तलाश में।
2: मौका मौका मौका, आज से अच्छा मौका और क्या हो सकता था? लेकिन तुमने जानबूझकर देर से आए ताकि ये चांस अवॉइड कर सको।
0: ओह चलो, आज की बात छोड़ो कीवी, मैं जल्दी ही किसी रोज।
2: मैं जानती हूँ वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
0: आएगा कीवी, आएगा।
2: आज ही क्यों नहीं?
0: आज बात यह है, वक्त नहीं रहा। देखो 7:30 बज रहे हैं और 8 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है।
2: मैं पहले ही जानती थी तुम जरूर कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकालोगे।
0: सुनो तो सही।
2: नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मेरे कहने से कौन रुकता है?
0: ओफो, अब तुम ही बताओ नीना।
3: नीना डार्लिंग, अब इजाजत लो। याद है ना कुमार्स के यहाँ डिनर है?
1: यस डार्लिंग, आइए चलें। अच्छा भाई विकी, गुड नाइट।
0: गुड नाइट नीना। गुड नाइट मिस्टर लाल।
3: कभी आइए मिलने।
0: जरूर जरूर। डार्लिंग,
4: तुम डार्लिंग कहते हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से उकताए हुए पति पत्नी हैं। मुझे इस लफ्ज से सख्त बनावट की बू आती है।
5: अरे विकी, तुम यहाँ अकेले ही खड़े हो और वो भी अंधेरे में।
0: हाँ यार, तुम ही रोशनी कर दो।
5: अब क्या और रुकने का इरादा है या चलना है?
0: अरे भाई, मुझे तो जाना है, 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना।
5: तो फिर चलो ना, 7:30 तो कभी के बज चुके हैं। आओ।
6: हैंडसम, हमसे तो आज बात भी नहीं की।
0: कभी इतना बोर करूंगा मैडम की कान पकड़ लोगी।
6: किसके?
0: अपने और किसके।
7: वेल सेड विकी।
6: चुप करो हार्टबीट।
0: ज़ाहिदा, कीवी कहाँ है?
6: लीजिए, वो हमसे पूछते हैं उनका दर्द दिल कहाँ है।
0: मजाक छोड़ो, मुझे जाना है भाई।
6: गेट पर होगी नीना को सी ऑफ करने के लिए।
5: तो चलो, चले मैं।
6: तुम भी जा रहे हो हार्टबीट?
8: तुम कहो तो रुक जाऊं।
6: कहा।
5: विकी, गुड नाइट। गुड नाइट, अपनी फ्लाइट अभी लेट है।
0: अच्छी बात है तुम्हारी किस्मत। गुड नाइट।
6: गुड नाइट हैंडसम।
0: गुड नाइट ज़ाहिदा।
6: जा रहे हो विकी?
5: अरे भाई इतनी जल्दी?
0: मजबूरी है अंकल, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं बॉम्बे से, 8 बजे फ्लाइट आनी है, एयरपोर्ट उनको रिसीव करने के लिए पहुंचना है।
3: फिर तो जरूर जाओ।
0: अच्छा कीवी,
6: थैंक्स फॉर कमिंग।
0: गुड नाइट एवरीबॉडी।
3: गुड नाइट।
0: ये लड़कियां इतनी ना समझ क्यों होती हैं?
9: तारीफ तो तुम क्या करोगे।

0: बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा होता है ना, ना मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार भूल जाता है।
1: May I have your attention, please? REC announces the arrival of their flight number 181 from Bombay. Thank you.
2: Good evening, sir.
3: Good evening, Vikram. How are you?
2: Very fine, sir. How was your journey?
3: Comfortable. Very comfortable indeed.
2: गाड़ी इधर है सर, आपका सामान?
3: बस यही हैंडबैग है।
2: तो आइए चलें, पहले होटल ही चलें ना?
3: No, no. पहले मैं कुमार्स के यहाँ डिनर के लिए जाना चाहूँगा, वहाँ पार्टी से बातचीत करके ही होटल जाऊँगा। होटल को टेलीफोन वहीं से कर देंगे।
2: राइट सर।
3: विक्रम, तुम्हारी सेल्स की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम थोड़ी सी मेहनत और करो तो हम सेल्स को और बढ़ा सकते हैं।
2: यस सर, मैं कोशिश करूंगा।
3: आई डोंट बिलीव इन कोशिश विक्रम, ये होना ही चाहिए। मैं कल सुबह तुम्हें इसका तरीका बताऊंगा। विक्रम, तुम्हारा ऑफिस अभी भी कई मामलों में बहुत ढीला है, उसे टाइट करो विक्रम, टाइट, खूब टाइट करो।
2: यस सर।
3: मुझे सुस्त रफ्तारी बिल्कुल पसंद नहीं विक्रम, तुम गाड़ी बहुत स्लो ड्राइव करते हो।
2: सड़कें ठीक नहीं है।
3: सड़कें ठीक न होने से क्या होगा, गाड़ी जल्दी पुरानी हो जाएगी। अगर हिसाब लगाकर सोचो तो तुम समझोगे कि वक्त की कीमत गाड़ी की कीमत से ज्यादा है।
2: यस सर।
3: हमने एक बार एक पूरा डिपार्टमेंट खोला था जिसका काम सिर्फ यही था कि हिसाब लगाए और देखे कि किस काम में कितना वक्त लगता है।
4: फिर उस वक्त से हम आगे ही आगे भाग रहे हैं, वहां रुककर पीछे देखने वाला इंसान कुछ ना जाएगा। विकी, जहां खड़े हो उसी को स्टार्ट मानकर नई दौड़ शुरू करो, नई दौड़ शुरू।
0: लेकिन सभी घोड़े तो रेस में फंस नहीं आए,
4: और तुम फिर उसके पीछे भागते रहोगे, भागते रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे। विक्रम, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। विकी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा, भागना होगा।
0: मम्मी बार बार मुझसे पूछती है, विकी ने प्रपोज किया, विकी कब प्रपोज करेगा, विकी के सहारे कब तक बैठी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी।
4: मुझे खड़खड़ाते हुए कारखाने की तमन्ना नहीं, मैंने तो एक छोटे से पुरसुकून घर का सपना देखा है, पुरसुकून घर का सपना।
5: और इसी भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी तो अलग अलग चीजें हैं। कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू, कमला इज हार्डली अ मैच फॉर
0: यू। ये शोर, ये हंगामा, ये कह कह इतनी भीड़ भाड़ क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेलेपन का शिकार होकर एक कोने में दुबका पल पल किसी के आने का इंतजार करता रहे, किसी के आने का इंतजार करता रहे।
4: बहुत कुछ है, और मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है, मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है।
0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम जानबूझ कर, हटो, देखो कोई आया है, देखो कोई आया है।
3: अरे ये क्या हुआ विक्रम, तुम रुक क्यों गए?
2: सामने ट्रैफिक लाइट में स्टॉप सिग्नल है।
3: ओह, देखा, ये भी वक्त के गलत इस्तेमाल की बात है। अगर इंसान सही वक्त पर स्टार्ट करे तो तमाम ट्रैफिक लाइट्स ठीक मिले। गो, चलो।
2: यस सर।
3: और अब तेज चलो, फास्टर, फास्टर, फास्टर विक्रम, फास्टर।
2: यस सर।
4: विक्रम, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा, भागना होगा।
0: मम्मी बार बार मुझसे पूछती है, विकी ने प्रपोज किया, विकी कब प्रपोज करेगा, विकी के सहारे कब तक बैठी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी।
3: फास्टर विक्रम, आई से फास्टर, फास्टर। क्या हुआ विक्रम, तुम अचानक रुक क्यों गए? तुमने तो गाड़ी भी बंद कर दी।
2: यस सर।
3: अरे क्या हुआ, तुम परेशान से दिखाई देते हो।
2: सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
3: हाँ,
2: सर।
3: हाँ।
2: मैं शादी करवा रहा
3: हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ?
2: कविता।
3: कविता?
2: स्ट्रॉन्ग टायर्स वाले मिस्टर गिडवानी की लड़की।
3: ओह, स्ट्रॉन्ग टायर्स, गुड, गुड, वेरी गुड मैच विक्रम, कंग्रेचुलेशन।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: गाड़ी फिर से स्टार्ट करो वरना देर हो जाएगी।
2: यस सर, यस सर।

यादों की परछाइयां, इस नाटक का अभी आपने चौथा और अंतिम भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: आइए अब सुनते हैं गजेंद्र वर्मा की आवाज में टेबल नंबर 21 फिल्म का गाना। गीत असीम अहमद अब्बासी का है, संगीत गजेंद्र वर्मा का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे।

उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह

संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई

हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अर्पण फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के।

0: 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: धन जवानी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहां भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया, हुआ

कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील।

0: यूनिके, मदर इंडिया, भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाती हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: भर भर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दर्द दिल का चिराग गोया बड़ी मुश्किल से जलाया है, आज फिर बेताबियों में खुद को घिरा पाया है। मोहब्बत के नशे मन में उनके कदमों के निशान ढूंढते हैं, फूलों में ओस की नाजुकी नगमों में तराना ढूंढते हैं। दिल के आंगन में मेरे चुपके से आता है कौन, मेरा सब्र हर घड़ी यूं आजमाता है कौन।

बाजार भी अजीब शय है, हर पल दिल उनके हुजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबियों के निशान देखे कहीं कहीं हमने, है चांदनी के शरारों सा शफाक हुस्न उनका। कलियों की सादगी कांधों पे करवटें लेती जुल्फें, लबों पे मुस्कुराहट, तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

जब जब पुकारा है, बात क्या चाहिए, सब कुछ मोहब्बत पे वारा है। ये ख्वाब नहीं अफसाना है, हकीकत है, दो घड़ी मिल बैठें, चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

आरती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये खुशबू ए नसीम, ये सितारों की रोशनी, ये शबनम के कतरे, ये फूलों की बहारें हैं फिजाओं में, ये नजारे जैसे चनार के पत्तों पे लिखी मोहब्बत की कोई इबारत हो। क्या जानिए क्या दिल का हाल होता है, बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से।
1: न झटको जुल्फ से पा

ये कश्मकश, ये उलझने बहुत मुश्किल है, ये दुनिया की रवायतें बहुत मुश्किल है, दिल का मामला है हरफों में कब बयां होता है, ये जिगर का तीर है मुश्किल से निकलेगा, जहां भी साथ निकलेगी अगर ये दिल से निकलेगा।

की मुस्कुराहट की कसम खा के ये हवाएं चलती हैं, शबनम ने इन्हीं होठों से जरूर ताजगी चुराई होगी, गुलों ने हवा की लाली आपसे ही पाई होगी, रात फूलों में भंवरों का कैद हो जाना, चुपके से चांद का तकना, मोहब्बत शय ही कुछ ऐसी है, तेरा मगरूर हो जाना, मेरा मशहूर हो जाना।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कुत्री

0: उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।